हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार

शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि तदनुसार 2 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेता मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों

0: पुरानी गहरी सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमरीका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमरीका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। ये समय है प्रभु वंदन आराधन का। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जब हम भगवान के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर भगवान के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं।

विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। आपका दिन मंगलमय हो, इसी के साथ दीजिए इजाज़त कार्यक्रम वंदना से। आंचल को नमस्कार।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए अब नजर डालते हैं आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर।

हमारी प्रातःकालीन सभा में सवेरे 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। खेती में आज आप सुनेंगे 6:50 पर। सदाबहार नगमों का समय रहेगा सवेरे 7:00 और 7:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सवेरे 8:00 और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से। 8:30 का समय रहेगा हमारे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का, जिसे आप हमारे दोनों ही चैनल पर सुन सकेंगे, FM रेडियो लेक सिटी और आकाशवाणी उदयपुर पर।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे सवेरे 9 बजे आकाशवाणी जयपुर से। 9:10 पर पुनः आप सुनेंगे नमस्कार उदयपुर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। सवेरे 10 बजे का समय रहेगा फिल्म संगीत का। शास्त्रीय संगीत आप सुन सकेंगे सवेरे 11 बजे और 11:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। दोपहर 12 बजे आप सुन सकेंगे फिर से फिल्म संगीत।

दोपहर 1 बजे का समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का। 1:05 पर ग्रामीण महिलाएं सुनेगी उनका अपना कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी। 1:45 का समय रहेगा फिल्म संगीत और साथ ही होगी विकास चर्चा में प्रधानमंत्री दीदी योजना पर बातचीत। दोपहर समाचार का समय रहेगा 2:15 पर किसान भाई सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम कृषि जगत 2:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे 2:03 आकाशवाणी दिल्ली से।

हमारी संध्याकालीन सभा का आगाज होगा शाम 5 बजे कार्यक्रम युवाणी के साथ। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम को 6 बजे। 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 6:30 का समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे 6:40 पर। 6:45 का समय रहेगा राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती और घर। फिल्म संगीत का समय रहेगा रात्रि 8 बजे और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। न्यूज 8:09 रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत का समय रहेगा 9:15 और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत यानी मनचाहे गीत और हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। और उसी के बाद 11:05 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का।

तो ये थी हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी उदयपुर है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में

यश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे। किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती में आज, प्रस्तुति नरेश नागदा की।
1: खेती में आज हुआ वाला हंगले किसान भाई बहना ने नंदू भाई रो राम राम सा। देखो किसान भाई बहनो, जून रो महीनो चाली रो हैसा और अणी महीना में आपने कशा कृषि संबंधी कार्य करना है। अणी महीना में आपने कई कई बातों रो ध्यान रखना है। अंडे बारे में बात करा तो देखो आप ही जाना कि खेती में जत्रो महत्व बारिश रो वेवे है, वत्रो इस महत्व देखो गर्मी रो भी वेवे है। और वैज्ञानिक सिफारिश करे है कि मई जून में खेतारी गहरी जुताई आपने करनी पड़े। कई है कि जुताई खेत में जतरा भी हानिकारक कीट और रोगाणु वेवे भी ऊपरी सतह पर आई जावे और तपती धूप में नष्ट हो जावे सा। कीट और रोग रोकवारो यो कुदरती तरीको है और कणी भी रसायनों ज्यादा कारगर है। अणियो कही है कि आगामी ऋतु में फसल उगावर वाते खेत अपनो जो है संरक्षित भई जावे। बारिश री मात्रा भले ही पहले जतरी नी वेवे लेकिन वंडो वितरण जो है असमान वह गयो है सा। पहली बारिश रही रहन पूरा खरीफ मौसम में चालती रहती ही और फसल ने पूरा जीवन काल में सिंचाई मिलती रहती ही। अब एवटिस टुकड़ा टुकड़ा में बारिश वेवे है सा। कनान कनान भारी बारिश भी वेवे तो कदी कदी दो फुहार रे बीच लंबो सूखो अंतराल भी आई जावे सा। और ये दो स्थितियां फसल रे वाते नुकसानदायक वेवे है और किसान और अन्य ध्यान में रखता थका आवश्यक वैग्यो है कि अपनी खेती में वंडे अनुसार बदलाव भी करनो पड़ेगा सा। और ज्यादा वर्षा रे पानी ने अपने खेत में ही संचित करनो है ताकि कही एक सूखा रे दौरान सिंचाई रे पानी री उपलब्धता वनी थकी रहे। अणी प्रकार रे संचयन ने अपी कहवा कि गांव रो पानी गांव में और खेत रो पानी खेत में सा। और अणी महीना में देखो खाली खेत में खरीफ फसला री बुआई री तैयारी अपने शुरू कर देनी है। क्षेत्र विशेष रे आधार पर अपने उपलब्ध जल और दूसरा संसाधन रे आधार पर अणी टेम पे खरीफ फसल री बुआई रे

0: डब्ल्यूपी 2 ग्राम प्रति किलो बीज हिसाबों अपने उपचारित करीन नर्सरी में बुआई करनी है सा। अबे आपी पुष्पा रे उत्पादन रिवाद करा तो वर्षाकालीन मौसमी फूल जैसे कि गेंदा है, बालसम है, जीनिया है, सूरजमुखी, कॉक्सकॉम आदि री नर्सरी एनी टाइम पे आपी तैयार कर सका। तैयार नर्सरी में झारा में नियमित सिंचाई आपने करतो रहनो है और खरपतवार ने भी निकालतो रहनो है सा। क्यारा में लागी थकी गुलदाउदी रे सकर्स ने आपने अलग करन लगावना है सा। गेंदा री वर्षाकालीन फसल री पौध रो खेता में आपने रोपण करनो है। कतारा रे बीच 60-90 सेंटीमीटर और पौधा रे बीच में आपने 45-60 सेंटीमीटर दूरी बनाई राखनी है। रजनी गंधारी फसल में प्रति स्पाइक फूलारी संख्या और स्पाइक री लंबाई बढ़ावा रे वाते GA3 जिब्रेलिक एसिड जन्य अपिका 50 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में गोल बने अपने पर्णीय छिड़काव अवश्य करनो है सा। किसान भाई बहनों देखो यो तो आप ही बात की थी कि देखो ये जून रो महीनो शुरू हो गयो है सा और आनी टाइम पे आपने कशा कशा कृषि संबंधी कार्य करना है सा और बातचीत तो और भी आप करवारी इच्छा है लेकिन गड़ी आड़ी देखा तो माने चालवारो टाइम भीरो है तो नंदू भाई ने आज्ञा दो सा राम राम सा।
1: कार्यक्रम खेती में आज अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुतकर्ता थे नरेश नागदा। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 7 बजे हैं, समय हुआ है सदाबहार नगमों का। सदाबहार नगमों में सबसे पहले आप सुनेंगे फिल्म ममता का ये खूबसूरत सा गीत, आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

शागिर्द फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और अगला गीत हमने चुना है फिल्म जॉनी मेरा नाम से, आवाज़ है किशोर कुमार और उषा खन्ना की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

उमंग फिल्म से आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में ये गीत, और अगला गीत हमने चुना है दुश्मन फिल्म से, आवाज़ है उदित नारायण और लता मंगेशकर की।

सदाबहार नगमे आप सुन रहे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी
1: ये तुम्हारे नाम
0: और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी
1: हाँ?
3: आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़ी गई जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

कारवा फिल्म का ये गीत। अगला गीत हमने चुना है फिल्म अजनबी से आवाज़ें हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

का मजा लीजिए

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
0: फिर ना कभी कहना।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म का ये गीत। इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे अब यहीं समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली पेशकश पंकज उदास की आवाज़ में।

चंदन दास की गाई ये गजल अभी आपने सुनी। इसी के साथ सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: Both sides underscored the importance.
4: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और

0: आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वही प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

0: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि यह घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
2: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से

0: प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है, शीर्षक दिया है महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Myanmar President U Min Aung Hlaing says his country will not allow its territory to be used against India's security interests. India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President U Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States

0: गिरने से डरना नहीं, हर बार उठना सीख। हार जीत का खेल है जीवन, अनुभवों को लिख। हिम्मत हो अगर दिल में, पहाड़ भी झुक जाएगा। जो खुद पर रखे भरोसा, समय भी रुक जाएगा।
1: बिल्कुल, देखिए आपने और हमने भरोसा रखा तो ये गर्मियों के दिन भी अब धीरे धीरे बीत रहे हैं, कट रहे हैं और बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है। बस इसी तरह से ज़िंदगी कटती है, लेकिन इसे अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ होते हैं हर सुबह लेकर नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त बीना और मेरे साथ
0: आंचल। तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार आंचल। आज है मंगलवार और आज के दिन हम तरह तरह की बातें करते हैं। इसे हमने कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे का नाम दे रखा है ना।
0: और आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम फिटनेस ट्रेंड्स और वास्तविकता से, साथ ही देंगे दैनिक खबरें और सोशल पल्स में हम बात करेंगे रेडियो के सुनहरे दौर की बातें।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए आज हम लेकर आएंगे कि प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक है इमरजेंसी फंड, और साथ ही इस भीषण गर्मी से बचाव और गर्मियों में फाइबर युक्त भोजन आप कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे कुछ जानकारियां साझा करेंगे।

0: नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम शुरू हो चुका है और जैसे कि आज हमने बताया कि हम कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे मना रहे हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है आज का आंचल वो है फिटनेस ट्रेंड्स और वास्तविकता।
1: बिल्कुल
0: अभी तुम देखो कि तुम कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोल के देखोगी ना, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि एक तो फूड बुक है और दूसरा है रायचंद जी कि आप अपने आप को फिट कैसे बनाएं। इसके लिए तरह के अलग अलग तरह के पता नहीं कितने तरीके बताए हुए हैं कि ऐसे फिट रहिए, ये मत खाइए। एक कोई बोलते हैं कि सब खाइए और हमारी दवाई ले लीजिए, कोई बोलते हैं कि ये छोड़ दीजिए, बस आप 1 महीने में आप एकदम स्लिम ट्रिम फिट हो जाएंगे।
1: जी
0: तो ये क्या है भाई?
1: बिल्कुल, बिना आजकल सोशल मीडिया पर ये बड़ा ट्रेंड चल गया हर जगह, फिट बॉडी, सिक्स पैक और डाइट चैलेंज। फिटनेस ट्रेंड मतलब परफेक्ट बॉडी, सिक्स पैक, जीरो फैट और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लान, और इसका रिजल्ट 15 से 30 दिनों में ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इन सब का सच जो है कैमरे का एंगल, लाइटिंग और एडिटिंग।
0: एक्चुअली सही है, बिल्कुल यही हालत है आंचल, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कितना रियल है। तो वास्तविकता से परे जाकर आप ये सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ बता दिया और आपने उसको फॉलो कर

0: के अपने बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और फिर नतीजा होता है बहुत सारे तरह की जो परेशानियां आती हैं, तरह तरह की मिनरल्स के विटामिन की बॉडी में कमियां हो जाती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसके बाद आप सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं।
1: बिल्कुल, फिटनेस का मतलब सिर्फ दिखना नहीं बल्कि स्वस्थ रहना है। फिटनेस एक धीमी और लगातार प्रक्रिया, स्ट्रिक्ट डाइट से ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस डाइट, परफेक्ट बॉडी से ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी बॉडी।
0: एकदम सही है। और इसके लिए आप अगर करना ही चाहते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करने का ट्रेंड है
1: जी,
0: पर ट्रेंड को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपको वाकई में अपने आप को बदलना है तो आप बहुत प्रशिक्षित, सर्टिफाइड और अपने बॉडी टाइप को देखने के बाद और वास्तविक जो नतीजे होते हैं, रियल नतीजे कि बिल्कुल आप ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, आप एक दिन एक महीने में 10 किलो कम कर जाएंगे, ये सब नहीं करें बल्कि आप बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों से और अपने बॉडी टाइप्स को समझ के उसके बाद अपने अपनी बॉडी में जो आपकी समस्याएं हैं, बिल्कुल कहते हैं ना व्यक्तिगत तौर पे आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या किसी से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपने आप के ऊपर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करिए।
1: बिल्कुल, फिटनेस ट्रेंड हमको प्रेरित कर सकते हैं लेकिन रियलिटी यही है कि अच्छी सेहत मतलब सही खान पान, रेगुलर एक्सरसाइज और पेशेंस।
0: बिल्कुल, उसके साथ साथ पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और नियमित फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल ही ज़रूरी है।
1: हमें फिट रहना है, परफेक्ट नहीं बनना।
0: एग्जैक्टली।

ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपल

0: हमने गीत भी सुना दिया और अब बारी है खबरों की। तो अभी तुम देखती होगी आजकल बहुत सारे ऐसे ऐसे हम केसेस सुनने को मिलते हैं कि किसी ने किसी को डिजिटली अरेस्ट कर लिया, उतना सारा बहुत सारा पैसा हड़प लिया और हमें पता ही नहीं चला कि हमारा पैसा कहाँ गया और हम डर डर के बैठे रहे। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो सीबीआई ने अभी एक डिजिटल अरेस्ट से लोगों को बचाने के लिए एक ऐप बनाया है, एक एआई आधारित नोटिस सत्यापन चैटबॉट बोलते हैं उसे, उसे तैयार किया है। यह नोटिस या वारंट के वास्तविकता की जांच, असली नकली की पहचान बता देता है। यह पहला रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन टूल है जिसे नागरिकों को साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट स्कैम के रिस्क से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका नाम है अभय, फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्पफुल असिस्टेंट फॉर यू। अभय एक चैटबॉट है जो साइबर अपराधियों के खिलाफ लोगों को डिजिटली सुरक्षा गार्ड देता है। ये ग्रामीणों, महिलाओं और बुजुर्गों को अपनी भाषा में भी सहायता करेगा और ये 24 घंटे काम करता है ये ऐप। राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाले कोर्ट या पुलिस के नोटिस से डरने की बजाय अभय के साथ उसका सत्यापन करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की साइबर ठगी घटना की आशंका है या ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप बिना डरे इसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर हेल्पलाइन अथवा साइबर हेल्प डेस्क नंबर पर कर सकते हैं। इसमें जो पोर्टल है वो है cybercrime.gov.in और साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 और साइबर हेल्प डेस्क नंबर है 9256001930 या 9257510100।
1: बिल्कुल। और दैनिक खबरों में एक खबर हमारे पास ये भी है कि MB अस्पताल परिसर में आए दिन होने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या और वाहन चोरी की वारदातों को देखते हुए हाथीपोल थाना पुलिस ने एक विशेष आदेश जारी कर अस्पताल परिसर में अव्यवस्थित वाहन खड़े करने वालों के चालान काटने के निर्देश दिए हैं। इसमें अस्पताल परिसर में ट्रैफिक व्यवस्था का सुचारू बनाने के लिए रोजाना 2 विशेष समय तय किए गए हैं। अब हर दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक हाथीपोल थाने के दिन के ड्यूटी ऑफिसर और हॉक 6 इंचार्ज मौके पर तैनात रहकर 9 पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटेंगे। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि संबंधित अधिकारी ड्यूटी के दौरान मुस्तैद नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

0: गूंजती थी हर घर में जिसकी मधुर कहानी, वो प्यारी सी आवाज थी आकाशवाणी।
1: दूर दूर तक संदेशों को पहुंचाती थी, हर दिल में खुशियों की लौ जगाती थी।
0: गीतों की धुन खबरों का साथ, दिखाती जीवन का सच्चा हर एक रास्ता।
1: जब साधन कम थे, समय था पुराना, आकाशवाणी ने ही सबको था जाना।
0: गांव हो या शहर, सबको जोड़े एकता के धागे में, दिलों को पिरोए।
1: सिर्फ रेडियो नहीं, यह पहचान हमारी, भारत की आवाज आकाशवाणी प्यारी।
0: बिल्कुल, बिना आज सोशल पल्स में हम बात कर रहे हैं इस रेडियो के सुनहरे दौर की, बातों की। रेडियो का सुनहरा दौर वह समय था जब हर घर में रेडियो की आवाज गूंजती थी। यह केवल एक यंत्र नहीं, लोगों के जीवन का अहम हिस्सा था।
1: बिल्कुल, और आज़ादी से पहले रेडियो ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जन जन तक बहुत रिमोट एरिया में भी पहुंचने का बहुत अच्छा साधन था। पर हम अगर अपने जीवन की, या मैं अपनी बात करूं कि मेरे स्कूल डेज में मुझे ध्यान है कि मम्मा सुबह से उठ के ही हमारी मम्मी रेडियो लगा देती थी, और जैसे जैसे कार्यक्रम एक के बाद एक आते जाते थे, वैसे वैसे हमें बिना घड़ी देखे पता चलता था कि अच्छा, अब हमें नाश्ता करना है, अब हमें यूनिफॉर्म पहननी है, और अब जस्ट अब हमको जूते पहन के निकल जाना है स्कूल के लिए।
0: बिल्कुल, मनोरंजन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण साधन था रेडियो, और इसमें फिल्में, गीत, भजन, लोकगीत सुना करते थे, और सबके साथ बैठकर नाटक, कहानियां और लोकप्रिय नाटक बिना का गीतमाला सुनने का तो अलग ही आनंद था।
1: बिल्कुल, और मुझे याद है कि मुझे बहुत लोग चिढ़ाया करते थे जब बिना का सिबाका हो गया था, कि भाई तुम भी अपना नाम बदल लो। लेकिन ये तो एक मजाक ठहरा, लेकिन आकाशवाणी ने, हमारे रेडियो ने हमको हमारे जीवन से जोड़ा है, हम एक दूसरे से जोड़ा है। और कहते ना कि हम काम करते रहे, रेडियो की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो हमारे कानों तक पूरी दुनिया पहुंचाता रहता है।
0: बिल्कुल, यह समय आपसे जुड़ा और खुशी का था, और हर खबर का भरोसेमंद साथी था हमारा रेडियो। उस समय लोग रेडियो पर समाचार सुनते थे और देश विदेश की महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहीं से ले पाते थे।
1: भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, आकाशवाणी ने इन्हें एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। बहुत सारे अलग अलग राज्यों के लोकगीत, साहित्य, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे देश में प्रसारित किए भी गए और किए जाते भी हैं। और जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर जो विशेष प्रसारण होते हैं आंचल, ये हमारे देशवासियों में राष्ट्रीय भावना को और मजबूत करते हैं। संकट और आपदा के समय भी आकाशवाणी विश्वसनीय सूचना प्रदान कर लोगों का मार्गदर्शन करता आया है। और संगीत और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत हो गया, लोक संगीत, साहित्य का संरक्षण, इसमें आकाशवाणी का योगदान अविस्मरणीय है। बहुत सारे प्रसिद्ध गायक, वादक, कवि, साहित्यकार, इन्होंने अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने के लिए आकाशवाणी एक मंच के रूप में चुना। इसके अलावा भी अगर कहते हैं कि कवि सम्मेलन, नाटक, संगीत कार्यक्रम, ये सब भी हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत को सहेजने में आकाशवाणी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: बिल्कुल, बिना रेडियो का सुनहरा दौर सादगी, भरोसा और अपनेपन का दौर था। आज तकनीकें बदल गई है, लेकिन उस समय की रेडियो की मिठास और यादें आज भी दिल में बसी है।

0: कल रात जैसी बरसात और आंधी तो अभी होने वाली है, क्योंकि मौसम का जो फोरकास्ट है वो यही कह रहा है कि जो पहला हफ्ता होगा ना जून का, उसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा, हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाओं का दौर रहने वाला है। कल दिन भर की तपिश के बाद, तीखी धूप के बाद करीब शाम को 6:30 बजे तेज़ गति से धूल भरी हवाएं चलने लगी। कई हिस्सों में तेज और मध्यम दर्जे की बारिश शुरू हो गई। अंधड़ से कई स्थानों पर पेड़ और टहनियां गिरने से सड़क मार्ग भी प्रभावित हुआ।
1: और साथ ही अगर बीते 24 घंटों के तापमान की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां, जल स्रोतों के पूजन के साथ कैच द रेन कार्यक्रम का आयोजन। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2047 के विकसित भारत के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री से कल शिष्टाचार भेंट के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी का राजस्थान के प्रति विशेष स्नेह और आत्मीय जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन विकसित राजस्थान के संकल्प को शक्ति प्रदान करता है। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री से सुशासन और जनकल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा कर मार्गदर्शन हासिल किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संगठन से जुड़े विषयों और आगामी कार्य योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने पत्रकार बातचीत में कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी बना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95%

0: डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि इस संबंध में एक मिलते जुलते नाम वाली एक साइट से लोगों को भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। पीआईबी ने आमजन से भ्रामक जानकारी से बचने और आधिकारिक साइट से ही प्रमाणिक जानकारी लेने की अपील की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कल नई दिल्ली से स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू हुए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के बारे में लोगों को जानकारी देना है। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर समापन आयोजन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम रखा जाएगा और विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी। इस दिन सभी ग्राम पंचायतों में अभियान की उपलब्धियों और स्वच्छ भारत मिशन के नियमों पर चर्चा की जाएगी। अभियान का उद्घाटन करते हुए श्री सीआर पाटिल ने विश्वास जताया कि ये अभियान जन भागीदारी बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने में मदद करेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं, जबकि अमेरिकी टीम का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। वाहनों के मूल स्वरूप में बदलाव कर उनमें मादक पदार्थों का परिवहन और उनका गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत परिवहन विभाग ने सभी परिवहन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा प्रदेश भर में इस संबंध में जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। विभाग के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित होने की सूचनाएं सामने आती हैं जिनमें नियमों के विपरीत अवैध मॉडिफिकेशन कर प्रेशर और एयर हॉर्न, अनधिकृत लाल और नीली बत्तियां लगाने का काम किया जाता है। ऐसे वाहनों का उपयोग गैर कानूनी गतिविधियों और अपराध में भी किए जाने की संभावना बनी रहती है, साथ ही सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन को 3 दिन के अंदर हटाने की अपील की है। प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जल स्रोतों और सरोवरों के पूजन के साथ ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें वर्षा जल को संग्रहण करने और पेयजल भंडारों के रख रखाव पर आम जन को जानकारी दी जाएगी। 5 जून तक चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर राज्य भर में लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। सरकार की इस पहल से राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले प्रदेश में जल संरचनाओं के संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। इधर अभियान के तहत सवाई माधोपुर में जल संसाधन विभाग की ओर से मानसरोवर बांध पर कार्यक्रम रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें राज्य और केंद्र की जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
2: कार्यक्रम के तहत जल पूजन, नहरों, खालों की सफाई, डीसिल्टिंग, श्रमदान और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा कैच द रेन, जल संचय, जन भागीदारी और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। साथ ही नवीन जल संरक्षण कार्यों के शिलान्यास और पूर्ण कार्यों के लोकार्पण होंगे। विभाग द्वारा वर्षा जल संचय संबंधी तकनीक की जानकारी तथा जल परीक्षण अभियान भी संचालित किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में कई जगहों पर आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। सरहदी जिले जैसलमेर में कल देर शाम तेज आंधी के साथ झमाझम बरसात हुई, जिससे लोग

0: लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के इलाकों में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि वहां धूल भरी आंधी से आसमान में गुबार छा गया।
1: जिले में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इस दौरान तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। जिला मुख्यालय के अलावा रामसर, चौहटन, धनाऊ और सेड़वा समेत कई इलाकों में तेज अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई। तूफानी हवाओं के चलते कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस दौरान रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही। तूफानी बरसात से तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस बीच मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: बांसवाड़ा, उदयपुर और सलूम्बर के साथ दक्षिणी जिलों में भी देर रात तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां बनी रहीं। भरतपुर, दौसा, करौली और आसपास के इलाकों में भी अंधड़ और बरसात से बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं और टीन टप्पर उड़ गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, 2047 के विकसित भारत निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। लोगों से फर्जी मेल और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रदेश में वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। और वंदी गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज भी कई गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में इस गीत के साथ।

0: ये मजबूरी सबके सामने कभी ना कभी आती होगी ना आंचल की, काम ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है, लेकिन पैसे बहुत थोड़े से हैं।
1: बिल्कुल, जानकारी के सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड मतलब एक ऐसी बचाई हुई राशि जो सिर्फ हमारे मुश्किल वक्त में काम आती है, जैसे बीमारी, नौकरी या नहीं रहना, कोई आकस्मिक दुर्घटना, जरूरी मरम्मत, और यह हमारी फाइनेंशियल सेफ्टी का मजबूत आधार है।
0: बिल्कुल, यह ऐसा पैसा होता है जिसे केवल और केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अलग रखा जाता है। अब इमरजेंसी फंड

0: कितना होना चाहिए। इमरजेंसी फंड हमने बता दिया कि ये होता है, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दें कि ये जो इमरजेंसी फंड होता है ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध जो आपकी लिक्विडिटी होती है जो आपके बैंक के खातों में पड़ी रहती है और जिसे आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं उसे इमरजेंसी फंड कहते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं कि आपने ज़मीन खरीद के रख दी और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप ज़मीन बेचने निकले, या आपने सोना खरीद के रख लिया, या आपने किसी में निवेश कर दिया, या आपने कोई SIPs डाल दी, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक विशुद्ध लिक्विडिटी फंड है। परिवार का जैसे मान लो कि 6 से 12 महीने के आवश्यक खर्चों के बराबर इस इमरजेंसी फंड को रखने की सलाह दी जाती है।
1: और ये हमारे अकाउंट में होना चाहिए,
0: बिल्कुल, है ना। यही तो मैं बोल रही हूँ कि लिक्विडिटी फंड होना चाहिए जी। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक उदाहरण के तरीके से हम हमारे श्रोताओं को समझाएं कि अगर आपके परिवार का मासिक आवश्यक खर्च 25,000 है, कि आपका एक महीने का खर्च आपके सारे, जिसमें आपकी EMIs भी चली जाती है, आपका रेंट भी चला जाता है और आपके जो दूसरे खर्चे हैं, ग्रॉसरीज है, सब कुछ मिला के अगर 25,000 रुपये आपके महीने के खर्च होते हैं तो कम से कम 1.5 लाख से 3 लाख का आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इमरजेंसी फंड के लिए बचत कैसे करें, तो इसकी शुरुआत हम छोटे से कर सकते हैं। जैसे हर महीने 500 से 1,000 रुपये हम शुरुआत करें और इमरजेंसी फंड को डेली एक्सपेंसेस से अलग रखें। बैंक में ऑटो ट्रांसफ़र सेट करा सकते हैं जिससे ऑटोमेटिक सेविंग हो जाए।
0: बिल्कुल।
1: बाहर खाना शॉपिंग को कम करके भी हम अपनी इसको बचा सकते हैं सेविंग्स
0: हाँ,
1: को।
0: लेकिन इमरजेंसी का जो ये फंड है इसका उपयोग छुट्टियां मनाने, नया मोबाइल या टीवी खरीदने के लिए या आपके जो शौक हैं उन्हें पूरा करने के लिए बिल्कुल भी मत करिए। इमरजेंसी फंड जो होता है ना वो किसी भी परिवार की आर्थिक सुरक्षा की पहली ढाल होता है। और आज का जो जीवन है आंचल, आज इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता के दौर में हम जी रहे हैं। हमारे पास अगर नौकरी है आज है कल नहीं है, हमें चेंज करना है, हमें शहर बदलना है, हमारे यहाँ बीमारियाँ अचानक से आ जाती है। कोविड में हमने सब ने सीखा है कि एक इमरजेंसी फंड होना कितना ज़रूरी है।
1: बिल्कुल।

0: तो भाई पैसों पैसों की बात तो कर ली, और बहुत ज़रूरी है इमरजेंसी फंड बनाना, और ये बड़े निवेश की तरफ बढ़ने का पहला कदम भी होता है। और अब बात करते हैं कि भाई इतनी तेज़ जो गर्मी पड़ रही है और उसके साथ साथ ये बार बार कभी मौसम ठंडा हो जाता है तो हम पानी पीना बंद कर देते हैं और उसके बाद हमें होता है डिहाइड्रेशन, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो कैसे इस भीषण गर्मी से बचें और गर्मियों में फाइबर युक्त भोजन में क्या-क्या शामिल करें, अब इसको लेकर हम थोड़ी सी बात आपसे कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, बिना गर्मियों में फाइबर युक्त भोजन बेहद फायदेमंद रहता है, हमारे पाचन को बेहतर बनाता है, शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। तो सबसे पहले कुछ फाइबर युक्त फूड जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम फलों की बात करेंगे। उनमें तरबूज, खरबूजा जो पानी और फाइबर से भरपूर होते हैं, शरीर को ठंडा, हल्का और हाइड्रेटेड रखते हैं। इसके अलावा एप्पल भी फाइबर का अच्छा स्रोत है, और पपीता जो कि पाचन के लिए, और नाशपाती जो कब्ज दूर करने में मददगार है।
0: अमरूद भी कहते हैं कि बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइबर का, और साथ ही साथ अमरूद और भी अन्य विटामिन और मिनरल्स को अपने अंदर समेटे हुए होता है। सब्जियों की अगर अब बात करते हैं ना आंचल, तो खीरा इन दिनों भर भर के आता है, और उसके साथ साथ आती है एक और जो हमारी देसी वाली ककड़ी, है ना, उसमें भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ ही लौकी, तुरई, गाजर, भिंडी, ये सब भी पानी के अच्छे सोर्सेज होते हैं। और इसके अलावा फाइबर भी इनमें बहुत होता है, और फाइबर जो होता है वो हमारी आंतों को साफ़ करता है और भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उनको ठीक से बॉडी अब्जॉर्ब कर सके उसके अंदर ये मदद करता है। साबुत अनाज और दालों की बात करते हैं तो जो ओट्स, दलिया, मूंग दाल, चना, राजमा, ये भी फाइबर से भरपूर होते हैं।
1: बिल्कुल, फाइबर से भरपूर हेल्दी और लाइट फूड है, और गर्मियों में शाम के समय तो हमें यही खाने चाहिए।
0: और अगर कुछ बीज और मेवे भी होते हैं जिसमें अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, तिल हैं, बादाम हैं, ये भी आप ले सकते हैं फाइबर के लिए।
1: बिल्कुल, इस गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी तो हमें पीना है, और ज़्यादा तला भुना खाने से भी बचना है।
0: बिल्कुल, और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फाइबर की तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर इसबगोल का भी उपयोग कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा फाइबर देता है।

0: चल, ये मौसम जो है ना, ये सिर्फ काले चश्मे से अपने को बचाने वाले नहीं है. अभी तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है. हमने देखा है लोगों को मुंह पे पूरा पैक करके, हाथों में ग्लव्स, पैरों में मोजे. थोड़ा सा तो बचना पड़ता है ये अल्ट्रा वायलेट रेज से, क्योंकि सूर्य की जो ये तेज किरणें हैं ये बिल्कुल ही जला देती है हमें.
1: बिल्कुल, इस मौसम में 12 से 4 के बीच निकलने से हमें बचना है. और अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो आपने जो जो चीज़ें बताई है कि बचना है, तो छाता, समर कोट, कैप और अपने आप को पूरा कवर करके हमें निकलना है.
0: बिल्कुल, और खाली पेट ना रहे. नींबू पानी, छाछ, सत्तू, नारियल पानी, बेल शरबत, ये सारे पेय पदार्थ हैं जो आपको गर्मी से लड़ने में हेल्प करते हैं.
1: और साथ ही इस मौसम में हल्के रंग और सूती कपड़ों का इस्तेमाल भी हमें करना है, जिससे गर्मी हमें कम लगेगी.
0: और धूप से आने के बाद पसीने में फ्रिज में से बॉटल निकाल के ठंडा बर्फ का पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है. तो ये सारी बातें हम रोज आपको बताते हैं जब तक ये गर्मियों का मौसम चलेगा. और आप ध्यान भी रखते हैं और आगे भी ध्यान रखिएगा, और आगे भी इस प्रोग्राम को कल भी सुनिएगा. आज हम आपको एक गीत के साथ छोड़े जाते हैं. नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का आज का ये सफर आपने तय किया आपकी रेडियो साथी बीना और
1: आंचल के साथ.
0: हम फिर मिलेंगे.
1: नमस्कार, नमस्कार।

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
1: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
1: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा।

0: अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी,
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी,
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को

0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन

0: देखो मुझे पास्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पास्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
1: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
0: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
1: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
0: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पास्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पास्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: चलो चलो चलो
5: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
6: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पास्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पास्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पास्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पास्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
3: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पास्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पास्चर
8: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
8: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
8: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा

0: के समस्या का हल ढूंढ सकूं।
1: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
3: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से

0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी

0: पूरी तरह तैयार नहीं है।
1: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
0: देखिए आप,
1: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
0: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
1: मेरा अच्छा, बेटा।
0: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
4: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
5: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग
8: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर।

0: गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने चुना है फिल्म 10 कहानियाँ सी। आवाज़ है आनंद राज आनंद की।

डंकी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। अगला गीत हमने लिया है फिल्म अजहर से, आवाज़ है आवाज़ें हैं अंतरा मित्रा और अरिजीत सिंह की।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन।
5: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
6: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: RBI कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना।

0: फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा रहे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर

सुरमा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे दिलजीत दोसांझ को। अगला गीत हमने लिया है फिल्म जॉली LLB 2 से। आवाज़ें हैं नीति मोहन और जुबिन नौटियाल की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की युगल आवाज में अभी आप सुन रहे थे स्त्री टू का ये खूबसूरत सा गीत। और अगला गीत हमने चुना है तू जूठी में मक्कार से, आवाज है जुबिन नौटियाल की।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: AIR at 90.
1: अब आपके मोबाइल में हमारा रेडियो कहीं भी कभी भी। अब आप सुन सकते हैं FM रेडियो लेक सिटी के प्रोग्राम्स देश और दुनिया के किसी भी कोने में।
0: रेडियो लेक सिटी, लेक सिटी।
1: हमारे प्रोग्राम सुनने के लिए आपको प्ले स्टोर या एप स्टोर में जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR ऐप। यहीं आपको मिलेगा हमारा चैनल AIR उदयपुर FM लेक सिटी।
2: नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप फन, इट्स कूलेस्ट वन, कूलेस्ट
1: वन। अब आप इसके आइकन को दबाएं और आनंद लें हमारे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का कहीं भी कभी भी।

बॉर्डर टू से अभी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार को। अगला गीत हमने चुना है यारिया फिल्म से, तुलसी कुमार और गजेंद्र वर्मा के युगल स्वर में।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। यह है आकाशवाणी उदयपुर। सवेरे के 11 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाएं शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नरेश कुमार वयर का सितार वादन। शुरुआत में आप सुनने जा रहे हैं राग किरवानी।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुनी नरेश कुमार वयर की सितार पर बजाई राग किरवानी।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना।
3: और ये
4: मेरी बुढ़िया के नाम।
5: पर दादी,
1: हाँ,
5: आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
7: क्या
6: RBI कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
9: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
10: बन गया बजट?
9: हाँ,
10: 5,000 बच गए।
11: तो नई साड़ी ले ले।
10: ना,
9: पिछले महीने तो ली थी।
10: एक और
9: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
10: बढ़िया, जाओ भाई।
6: RBI कहता है,
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं नरेश कुमार वयर का सितार वादन का अगला भाग। इस बार आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग नट भैरव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नरेश कुमार वयर का सितार पर बजाया राग नट भैरव। और इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर की मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 11:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुछ गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम है सुगम संगीत।

अभिजीत का गाया गाना अभी हमने सुना श्रोताओं, एल्बम का नाम था लम्हे। और अब आइए आपको सुनवाते हैं आबिदा परवीन की गाई एक गज़ल।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले
1: ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

और साथियों की आवाज़ों में हमने अभी सुना श्रोताओं लॉटरी इस एल्बम से ये गाना। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। आइए अब सुनते हैं अदनान समी को, एल्बम है तेरी कसम।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: चांद सा मुखड़ा, यह है इस एल्बम का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गायक कलाकार अली हैदर और ये है आज के सुगम संगीत का आखिरी गीत।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। मध्याह्न के ठीक 12 बजे हैं। प्रस्तुत है दोपहर फिल्म संगीत।

आपकी रेडियो दोस्त चैताली आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। दोस्तों, आज का फिल्म संगीत हमने केंद्रित किया है भारत सरकार ने, जिन्हें उनके फिल्म में योगदान के लिए 2002 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले, 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण सिनेमा ने उन्हें दिए। इसके अलावा दुनिया भर की विभिन्न फिल्म समारोहों ने उन्हें कई पुरस्कार दिए हैं। ऐसे ही एक शख्सियत है जिन पर आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम केंद्रित है। पहले ये गीत सुनते हैं, हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए।

जी हाँ दोस्तों, ये थी 1990 की फ़िल्म अंजलि का गीत, और इस फिल्म के निर्देशक थे सुप्रसिद्ध डायरेक्टर मणि रत्नम। जी हाँ, गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम, जिनका जन्म 2 जून 1956 को हुआ था, जिन्हें पेशेवर रूप से मणि रत्नम के रूप से जाना जाता है। ये एक भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक हैं, जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा और कुछ कुछ हिंदी, मलयालम और तेलुगु के साथ कन्नड़ फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रमुख और महानतम निर्देशकों में से एक इन्हें माना जाता है, मणि रत्नम, जिनका आज जन्मदिन है, और हमने आज का प्रोग्राम केंद्रित किया है इन्हीं पर।

फिल्म निर्देशक मणि रत्नम पर आज का प्रोग्राम। फिल्म परिवार में जन्म लेने के बावजूद मणि रत्नम को बचपन से फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सलाहकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उसके बाद 1983 में कन्नड़ फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी से फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। उनकी बाद की फिल्मों की असफलता के कारण कम प्रस्ताव मिलने लगे। तेलुगु और मलयालम सिनेमा में काम करने के बाद उन्हें मौना रागम, जो कि 1986 में आई थी, एक बड़ी सफलता के रूप में ये फिल्म साबित हुई, जिसने उन्हें तमिल सिनेमा में एक अग्रणीय फिल्म निर्माता

के रूप में स्थापित किया और उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार दिलाया। वे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नायकान और अंजलि के निर्देशक थे। दोनों ही फिल्में अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भी चुनी गई थीं। मणिरत्नम ने क्राइम ड्रामा थलपथी, रोमांटिक आतंकवाद ड्रामा रोजा, बॉम्बे दिल से और अपनी रोमांटिक ट्रायंगल मूवी मौना रागम अलाई पयूथे और ओ कधल कनमनी के साथ सफलता हासिल की। आइए श्रोताओं, इन्हीं की एक फिल्म जो 1992 में आई थी, रोजा का ये गाना सुनते हैं।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गए सैलरी?
2: हाँ।
1: आ? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक मणि रत्नम की फिल्मों के गीत आज हम इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे हैं। श्रोताओं, मणि रत्नम की हर फिल्म की अपनी एक अनूठी शैली है, जिसमें खूबसूरती से फिल्माए गए गाने और अनोखी बैकलाइटिंग शामिल है। उन्होंने रोमांटिक, आतंकवाद विरोधी, युद्ध और ड्रामा फिल्मों में सफलता हासिल की है। कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित भारतीय महाकाव्य पर आधारित उनकी ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में पोन्नियिन सेल्वन 1 और पोन्नियिन सेल्वन 2 समीक्षकों और दर्शकों दोनों ही दृष्टि से ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इनमें से उनकी पहली फिल्म भारत में 35वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली और तमिल जगत में 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सफल फिल्म बनी।

दोस्तों, मणिरत्नम का जन्म 2 जून 1956 को तमिलनाडु के मदुरई में एक तमिल अय्यर परिवार में हुआ था। वे फिल्म निर्माण से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए परिवार के दूसरे बच्चे थे। उनके पिता एस गोपाल रत्नम वीनस पिक्चर्स के

लिए काम करने वाले एक फिल्म मृतक थे, जबकि उनके चाचा वीनस कृष्णमूर्ति एक फिल्म निर्माता थे। उनके बड़े भाई जी वेंकटेश्वरन ने उनकी कुछ फिल्मों का निर्माण किया। उनके छोटे भाई जी श्रीनिवासन ने भी उनकी कुछ फिल्मों में सह निर्माता के रूप में काम किया। मणिरत्नम अपने भाई बहनों और चचेरे भाइयों के साथ मद्रास में ही पले बड़े थे। फिल्मी परिवार होने के बावजूद बच्चों को फिल्में देखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि बड़ों द्वारा उन्हें वर्जित माना जाता था। बचपन में फिल्में समय की बर्बादी लगा करती थी। उन्होंने 1994 में एक साक्षात्कार में इस बात का दावा किया था। हालांकि बेसांत थियोसॉफिकल स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने फिल्में अधिक सक्रिय रूप से देखना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने शिवाजी गणेशन और नागेश जैसे अभिनेताओं के प्रति अपनी रुचि जागृत की, सभी फिल्में उनकी देखी। और जब उन्होंने दिग्गज निर्देशक के बालाचंदर को जाना तो वे उनके प्रशंसक बन गए। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद मुंबई में जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से स्टडीज़ से वित्त में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA किया। 1977 में अपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मद्रास की एक फर्म में प्रबंधन सलाहकार के रूप में भी नियुक्त हो गए और वहां उन्होंने कुछ समय तक काम किया।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: दोस्तों, मणिरत्नम, के बालाचंदर, गुरुदत्त और शिवाजी गणेशन की फिल्में देखते हुए बड़े हुए वे। अकीरा कुरोसावा, मार्टिन स्कोरसेसी और क्रिस्टोफन कीस्लोवस्की, इंगमार बर्गमैन और महेंद्रन की फिल्म निर्माण की शैलियों से बहुत प्रभावित थे। अपने समकालीनों के विपरीत, मणिरत्नम ने फिल्म उद्योग में आने से पहले फिल्म निर्माण में किसी की सहायता नहीं की थी। उनकी अधिकांश फिल्मों में सामाजिक राजनीतिक विषयों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है। कला और व्यावसायिक तत्वों को संयोजित करने के उनके विचार के कारण उनकी अधिकांश फिल्मों को आलोचकों की प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता दोनों प्राप्त हुई। नायकन, बॉम्बे और इरुवर वास्तविक जीवन की पटकथाओं से प्रेरित फिल्में थीं, जबकि थलपति और रावण भारतीय महाकाव्यों पर आधारित फिल्में थीं।

दोस्तों, मणिरत्नम ने अपनी अधिकांश फिल्मों की पटकथाएं स्वयं लिखी। अपनी प्रत्येक फिल्म के कलाकारों के चयन के लिए उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि मैं ऐसा निर्देशक नहीं हूं जो अभिनय करता है।

श्रोताओं, फिल्म निर्देशक मणि रत्नम के जन्मदिन के अवसर पर आज का ये एक घंटे का कार्यक्रम हमने उन्हें समर्पित किया। उनकी निर्देशित किन किन फिल्मों के गीत आज हमने आपको सुनवाए, उनके नाम बता दें, अंजलि, दिल से, युवा, गुरु, रोजा, रावण, बॉम्बे, ओके जानू और ये आखिरी गीत अब आप सुनने जा रहे हैं साथिया फिल्म से।

0: तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये भाग यहीं समाप्त होता है। दिन में 1:45 पर एक बार फिर से आपके लिए फिल्म संगीत की बाकी के नगमे लेकर आएंगे। फिलहाल दिन का 1 बजने वाला है और कुछ ही पलों में आकाशवाणी जयपुर अजमेर से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: 1 बजने को है, अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने आज शपथ ली। कॉलेजियम की 22 और 27 मई को हुई बैठकों में इन 5 के नामों की सिफारिश की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन पांचों न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। सीबीएसई ने बताया कि ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के पास आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राजस्थान में भागीदारी बढ़ रही है। प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने और बिजली बिल पर खर्च से मुक्ति के लिए विद्युत उपभोक्ता लगातार इस योजना से जुड़ रहे हैं। योजना के तहत मई महीने में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं जो फरवरी 2024 से योजना के शुरू होने के बाद अब तक का सर्वाधिक रूप टॉप सोलर इंस्टॉलेशन है। राजस्थान डिस्कॉम के सहयोग से चल रही योजना में बीते महीने सबसे अधिक 9,316 सोलर प्लांट जोधपुर डिस्कॉम में लगाए गए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में प्रदेश में 830 मेगावाट क्षमता के लगभग 2,17,000 से अधिक रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं और लगभग 1,460 करोड़ रुपए की सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में पिछले 12 सालों के दौरान उल्लेखनीय बदलाव आया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के साथ काम कर रही मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। सरकार के सतत प्रयासों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग बचत और उद्यमिता से जोड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 3-4 दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियां अभी कुछ दिन और बनी रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव 5 जून तक बना रहेगा। विभाग ने आज 19 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच बारिश और आंधी के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई शहरों में पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, टोंक, अलवर, सवाई माधोपुर और जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। हमारी ग्रामीण महिला श्रोताएं अब सुनेंगी उनका अपना कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी।

0: राम राम।
1: सैलियारी बाड़ी कार्यक्रम सुनवा वाली हंगली बहना ने भी आपनो
0: राम राम सा। देखो भाई सा, देखो कार्यक्रम रो टाइम भी है और आप आई गया हाँ आपनो जानकारी रो आपने मनोरंजन रो पिटा रो लेन। और आज आपने बहनों सब पहली बात करा कि देखो स्वयं सहायता समूह है वणी मीने जो महिला वालों जो नेतृत्व है वनडो विकास किस तरह वे सके है।
1: देखो सा, स्वयं सहायता समूह ऐसा छोटा छोटा समूह है जनी में देखो सामान्यतः 10-20 बहना जो है भी शामिल हुए वे। ई बहना नियमित रूप थोड़ी थोड़ी बचत करे और अणी बचत रो उपयोग समूह री जो सदस्य महिलाएं वनारी जो भी जरूरत हुए वे वन्ने पूरो करवा रे वास्ते या पछे कोई छोटो व्यवसाय शुरू करना चाहे वणी में करे सा। और अणी व्यवस्था में देखो बहना ने आर्थिक सहायता तो मिले ही जे लारे ही वणा में आत्मनिर्भरता री भावना भी विकसित वे सा।
0: हाँ जी बात है सा। देखो और अगर अंडे लाभ री बात करा तो स्वयं सहायता समूह रो सब मोटो लाभ यो से कि बेना में नेतृत्व री क्षमता जो है वनडो विकास वे वे है। समूह रा संचालन रे वास्ते अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जैसी जो जिम्मेदारियां वे निर्धारित करी जावे और जना बेना अणा जिम्मेदारियां रो निर्वहन करे तो वणा ने निर्णय लेवारी योजना बनावारी लोगों संवाद स्थापित करवारी और समस्या में जत्री भी वे वनडो समाधान करवारी क्षमता विकसित वे वे और यो जो गुण है एक सफल नेतृत्व करतारी पहचान बने है।
1: सही कह रहा हो सा। और देखो अनुश्री भाई सा, आप जाना कि भाई पहला कई महिला जो है सार्वजनिक रूपों अपनी बात रखवा में संकोच करती ही, लेकिन समूह जुड़वा रहे कह रहे वना में आत्मविश्वास बढ़े भी। देखो बैठका में अपनी राय व्यक्त करे, कई जो विषय है वना पे चर्चा करे और देखो सामूहिक निर्णय लेवारी प्रक्रिया में भागीदारी भी निभावे और अणि वनारो कहिए व्यक्तित्व निखरे वनार जो संकोच है वो खत्म वे और भी जो है समाज में अपनी अलग पहचान बनावा लागे है।
0: देखो आज कही है कि घना गांव है जणी में स्वयं सहायता समूह जो है वणी में ने जो अपनी बेना है वे डेयरी सिलाई कढ़ाई खाद्य प्रसंस्करण अगरबत्ती निर्माण मसाला उद्योग हस्तशिल्प जैसे जो स्वरोजगार है वनारी गतिविधियां रे माध्यम अच्छी आय अर्जित करी रही है। अणि उन्हीं केवल वनारे परिवार आर्थिक स्थिति मजबूत हुए बल्कि वे खुद भी दूजी महिला जो है वनारे वास्ते प्रेरणा रो स्रोत बनी रही है।
1: बहुत बढ़िया बात बताई सा। और देखो स्वयं सहायता समूह बेना ने केवल आर्थिक रूप सशक्त नहीं करे बल्कि देखो वणा ने सामाजिक रूप भी जागरूक करे। समूह में देखो अंडे माध्यमों बेना शिक्षा स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता बालिका शिक्षा पर्यावरण संरक्षण और सरकारी जो योजना चल रही है वंडी जानकारी भी प्राप्त करे आपस में एक दूसरे को साझा करे भी अपने अधिकार ने भी समझे और समाज में सकारात्मक बदलाव लावारो प्रयास भी करे। आज देखो कई बेना समूह रे माध्यमों बैंक को जुड़ रही है ऋण ले रही है और देखो सफल उद्योग चलाई रही है उद्यमी भी बन रही है सा।
0: हाँ जी बात है सा। देखो नेतृत्व विकास री आप अगर बात करी रहा तो नेतृत्व विकास रो मतलब खाली समूह रो नेतृत्व करनो इस पे बल्कि देखो जीवन में जो महत्वपूर्ण निर्णय वे वे वना ने खुद लेवारी क्षमता भी विकसित करे जना बेना आत्मविश्वासी और सक्षम बने तो वनारो परिवार समाज और आवा वाली पीढ़ियां भी वना लाभ लेवे है। अणि वास्ते यो है कि जरूरी है इसे कि ज्यादा से ज्यादा बेना जो है स्वयं सहायता समूह जुड़े अपनी प्रतिभा ने पहचाने नेतृत्व री जिम्मेदारी हमारे और एक सशक्त और नेतृत्वकारी महिला री समृद्ध परिवार और जागरूक समाज री विकसित करवा और विकसित राष्ट्र में एक मजबूत नींव वा रख सके है।
1: बहुत अच्छी बात बताई सा अनुश्री भैसा। और देखो बेना भी जी नी जुड़ी तकी है वी भी स्वयं सहायता समूह जुड़ेगा अपने व्यक्तित्व ने निखारेगा आगे बढ़ेगा वनारे महीने जो हुनर कौशल है वना ने बढ़ाएगा और देखो जटे बेना कौशल ने बढ़ाएगा बटे देखो परिवार में खुशहाली आएगा सा।
0: बिल्कुल सा। और आप इशारों में हम जी रहो कि अगर खुशहाली आई तो देखो आपने गीत संगीत गुनगुनावरो मन करी तो आप इशारो है कि आपने बेना ने एक बढ़िया सो गीत सुनावा और पहली गीत पहली आपको तो एक बढ़िया सो गीत सुनावा और बनी पहली आप संदेश सुनाई था सा।
1: हाँ सा।

तो भाई साहब देखो बढ़िया सो आपा गीत सुनी और गीत सुनी पाचा कार्यक्रम में आया। और अबे देखो आपा डिजिटल शिक्षा री तरफ जावा, डिजिटल साक्षरता आज रे टाइम में बहुत जरूरी है। और अणी रे अंतर्गत आज आपा अपनी बहनों बात करा कि डिजिटल वेरिफिकेशन और डिजी लॉकर जो सुविधा है वाकई है और कणी तरह वा अपने फायदा।

0: फायदेमंद भी सके है। तो देखो कई है कि आज रे टाइम में ज़्यादातर जो सरकारी और निजी सेवा है जो वह ऑनलाइन भी की है, छात्रवृत्ति, पेंशन, बैंकिंग, बीमा, नौकरी रो आवेदन, सरकारी योजना रो लाभ, बात बात जो प्रमाण पत्र रा सत्यापन, अब डिजिटल माध्यम उस वही रहा है। ऐसे हमें डिजिटल वेरिफिकेशन और डिजी लॉकर जैसी जो सुविधा है वे आप बेना ने नागरिका रे समय, श्रम और धन बचावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है।
1: बढ़िया बात बताई सा। और देखो डिजिटल वेरिफिकेशन कही है यो बतावा, तो देखो डिजिटल वेरिफिकेशन रो अर्थ है कहीं भी मना करे दस्तावेज री जानकारी री ऑनलाइन पुष्टि करनो। पहला कहीं भी प्रमाण पत्र री सत्यता जांचवारे वास्ते संबंधित कार्यालय में चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन अबे यो काम थोड़ा मिनटा में ऑनलाइन करियो जा सके। उदाहरण वास्ते देखो आधार कार्ड व्यो, पेन कार्ड व्यो, शैक्षिक प्रमाण पत्र व्या, या पे ड्राइविंग लाइसेंस जैसा जी भी दस्तावेज व्या वना रो सत्यापन डिजिटल माध्यमों कर सका। अन्य देखो फर्जी जो दस्तावेज है वना पे भी रोक लागे और सेवा में जो है पारदर्शिता भी बढ़े सा।
0: बिल्कुल भाई साहब, देखो डिजिटल वेरिफिकेशन कही है यो आप बताई, और अबे डिजी लॉकर कही है या आप बतावा, तो देखो डिजी लॉकर जो है भारत सरकार वो एक डिजिटल सेवा है जनी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यो संचालित वेवे है, और नागरिका ने अपना जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वना ने सुरक्षित राखवार वास्ते ऑनलाइन राखवारी सुविधा प्रदान करे है। डिजी लॉकर एक डिजिटल तिजोरी री तरह काम करे जिमें आप अपना दस्तावेज ने सुरक्षित राख सको और आवश्यकता पड़वा पे कट्टे भी कहीं भी जगह वंडो उपयोग आप ले सको हो।
1: या तो बहुत बढ़िया बात ऐसा कि भाई कटे कागज पांडरा नहीं ले जाना पड़े।
0: बिल्कुल।
1: और देखो डिजिटल लॉकर में कसा कसा दस्तावेज आप रख सका या बात करा, तो देखो आधार कार्ड रख सका, पेन कार्ड रख सका, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, अंक तालिका और डिग्रियां जो है बढ़िया 5 GB है भी रख सका, बीमा दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और कई जो सरकारी प्रमाण पत्र है जनारी जरूरत अगर आपने पड़ती रहे तो वी सब दस्तावेज आप मोबाइल या पचे कंप्यूटर रे माध्यम आसानी देख भी सका, साझा भी कर सका, कभी जरूरत पड़े तो भी दिखाई भी सका सा।
0: सही है सा, देखो ये सब चीजा पहली आपने कागज पानड़ा लारे लेन चालनो पड़तो, अबे आपने अणा ने लारे नहीं ले जानी पड़े और आप अणा ने PDF रे रूप में ले सका हां। और देखो डिजी लॉकर रा जो लाभ है वणा लाभ रा यही से कि सब पहले तो आप बात करा कि दस्तावेज जो गमवारो डर है जो वो खत्म हो गयो और कागजी प्रतियां जो है हाथे रखवारी आवश्यकता नहीं रही है। सरकारी कार्यालय में दस्तावेज जमा करावरी प्रक्रिया सरल वे जावे, समय और धन रित बचत वे भी से, साथ ही साथ देखो दस्तावेजारी जो प्रमाणिकता है वह भी सुनिश्चित रहे है।
1: लारे देखो ये सब चीजा जो है बेनारे वास्ते क्यों खास है, अंडी बात करा तो देखो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अपनी बेना आज शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं जुड़ रही है। ऐसा में देखो आधार कार्ड, बैंक रा दस्तावेज, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और दूजो जो खास कागजात है वना ने सुरक्षित रखना भी जरूरी है। डिजी लॉकर अपनी बेनारे वास्ते वनारा जो दस्तावेज है वना ने सुरक्षित रखवार वास्ते और तुरंत जो है वना ने उपलब्ध भेजा यह सुविधा देवे। अगर कणी बेना ने छात्रवृत्ति, स्वरोजगार ऋण, पेंशन या दूजी सरकारी योजना रे वास्ते आवेदन भी करना पड़े तो देखो डिजी लॉकर में सुरक्षित दस्तावेज बड़ी सहायता प्रदान करे सा।
0: और देखो अन्य शुरू किस तरह करा भाई सा यो अपनी बेना ने बतावा, तो अंडे वास्ते डिजी लॉकर रो उपयोग करवार वास्ते मोबाइल नंबर और आधार संख्या की आवश्यकता अपने वेवे है। अंडे पचे OTP रे माध्यम पंजीकरण करी न खातों बनाई जा सके और एक बार खातों बनावा रे पचे बात मात्रा विभागों जुड़िया दस्तावेज सीधा आपने डिजी लॉकर में प्राप्त वे जावे है।
1: तो देखो डिजिटल भारत रे दौर में डिजिटल वेरिफिकेशन और डिजिटल लॉकर सुविधा अपना जी भी नागरिक है, जी भी बेना है वना ने सुरक्षित, सुविधाजनक और पारदर्शी सेवा देवे सा। और यह नहीं केवल दस्तावेज ने सुरक्षित सुनिश्चित करे बल्कि देखो सरकारी सेवा तक पहुंचने भी आसान बनावे। अंडे वास्ते देखो हरेक जो आमजन है वना ने खास तौर जिस तरह की बेना भी अपना मोटियार व्या अना सबने डिजिटल सुविधा रो लाभ उठानो चाहे और डिजिटल साक्षरता ने बढ़ावो देनो चाहे। तो देखो अनुश्री वैसा जानकारी आप अणिच वास्ते देवा कि भाई जना ने जानकारी नहीं है भी जानकारी करने पूरो अणा सब चीजा रो जो चाल रही है अबाणु और आपने वास्ते बहुत सुरक्षित और सरल है अणा रो उपयोग कर लांगा तो देखो आपने जीवन में आसानी वे जाएगा और जीवन में आसानी वेगा तो आप खुशहाल रहांगा। खुशहाली देखो कार्यक्रम में भी करा चला गीत संगीत आड़ी

0: तो भाई साहब देखो बढ़िया सुगीत सुनायो नखराली कामल गाली। देखो अपन राजस्थानी रे गीतारी तो बात ही अलग है और अनारो नखरो ही अलग है। तो अनि नखराऊ अबे आपा भी थोड़ा सा बाणे आवा क्योंकि झूमता झूमता यो भी भूल गया हाँ कि कार्यक्रम भी देवणो है और सूचना भी देनी है समाचार जो सूचना भी देनी और आपने चीजा रे बारे में भी बताणो है। तो अबे आपा अपनी बेना ने ले जावा उद्योग रियाड़ी और देखो आज आपा बे बतावा डेयरी आधारित गृह उद्योग ये किस तरह वे है और कई वे और अर्थव्यवस्था में ये किस तरह भागीदारी निभावे है।
1: देखो सा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी उद्योग रो खास महत्व है और यो असो व्यवसाय है जने कम पूंजी में घरों आपा शुरू कर सका और नियमित आय रो भी यो अच्छो साधन बनायो जा सके। खास तौर देखो बेनारे वास्ते डेयरी आधारित जो गृह उद्योग है भी आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण रो प्रभावी माध्यम भी बन रहो है।
0: बिल्कुल सा। और देखो भारत दे अगर बात करा तो यो एक कृषि प्रधान देश है अटे पशुपालन सदियों चालतो ही रो ग्रामीण जीवन अणि मीने रचियो बसियो है। गाया भैंसिया बकरिया जैसिया जो दूध देवा वाला जो पशु है वे परिवार पोषण संबंधी आवश्यकता ने तो पूरा करे ही से लारे लारे देखो अतिरिक्त आय रो स्रोत भी बने अणि आधार पे डेयरी उद्योग रो विकास भी हो है।
1: और देखो डेयरी आधारित गृह उद्योगों दूध उत्पादन रे लारे लारे दूध उबणिया तका कई उत्पाद तैयार कर सका। अणि में देखो दही छाछ मक्खन घी पनीर मावो मिठाया ई सब खास है और अणा उत्पाद री बाजार में साल भर मांग वणी तकी रहे जणे रोजगार और आय रा अवसर भी पड़े सा।
0: और देखो आप पहली भी बात करी रहा वणी मैंने बतायो हो कि ग्रामीण बेना जो है स्वयं सहायता समूह रे माध्यमों जुड़ी तकी है। तो ये कई एक अन्य माध्यमों डेयरी व्यवसायों भी जुड़ रही है। वे दूध संग्रहण प्रसंस्करण और विपणन रो काम जो है सामूहिक रूपों करी रही है अन्य कई है कि वनारी आय में वृद्धि वे और परिवार री आर्थिक स्थिति भी मजबूत वे है।
1: और देखो डेयरी उद्योग री सब बड़ी विशेषता यह है कि यानी में हर दिन नगद आय मिल सके आपने और अन्य संभावना भी रहे। किसान भाई सुबह और शाम से दूध बेचने नियमित आमदनी प्राप्त कर सके। अपनी बेना भी देखो ये सब काम कर रही है तो अंडे अलावा देखो मवेशियों प्राप्त जो गोबर रो उपयोग है वो भी जैविक खाद और बायोगैस बनावा में भी कर सका जनियों अतिरिक्त लाभ आपने मिल सके सा।
0: लेकिन वैसा देखो डेयरी व्यवसाय में सफलता पावर वास्ते कुछ खास बातारो ध्यान रखना जरूरी है जैसे कि पशुओं ने संतुलित आहार देना है स्वच्छ पानी और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावनी है पशुशाला री अपने साफ सफाई रखनी है समय माते पशुओं रो टीकाकरण कराना है नियमित देखभाल करनो अणियों कही है कि दूध उत्पादन में वृद्धि वेवेला।
1: और देखो सरकार भी डेयरी विकास ने बढ़ावा देवारे वास्ते कई योजना संचालित कर रही है। पशुपालका ने ऋण अनुदान प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई रही है। कई जो सरकारी दुग्ध समितियां है भी किसान भाइयों दूध खरीदने वनारो उचित मूल्य भी दे रही है सा।
0: डेयरी आधारित जो गृह उद्योग है वे खाली पैसा आपा के वहाँ के आय रो साधन नहीं है बल्कि ग्रामीण विकास रो मजबूत आधार है। ये बेना ने रोजगार प्रदान करे परिवार की आर्थिक स्थिति ने सुधारे और साथ ही गाँव में स्वरोजगार रो अवसर भी पैदा करे है।
1: अगर देखो उचित योजना मेहनत और प्रशिक्षण रे लारे डेयरी व्यवसाय शुरू करियो जावे तो यो एक सफल और लाभदायक गृह उद्योग भी बन सके। और अपनी जो गांव में रहवा वाली सब बेना है मोटियार है अनारे वास्ते तो देखो आत्मनिर्भरता री दिशा में यो खास कदम भी है सा।
0: बिल्कुल भाई साहब देखो बढ़िया सी जानकारी आपा दीदी है कि डेयरी उद्योग ने डेयरी आधारित जो गृह उद्योग है कई तरह आगे बढ़ सके है यह भी आपा जानकारी दीदी। और देखो अबे आपा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा।

0: तो अनुश्री भाई साहब देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत आपा सुनाए और छोटे जानकारी री बात कर रहे हाँ वो तो कई भी सरकार योजना चलावे वंडी जानकारी भी आपा बेना ने देवा क्योंकि सरकार जो योजना चलावे वंडो पूरो लाभ भी जदीच मिलेगा जदी की बनाने जानकारी वेगा। और आज देखो कई योजना लेने आया हो सर।
1: देखो भाई साहब, आज आपा योजना लाया अपने बेना ने आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनावारी दिशा में ने जो महत्वपूर्ण पहल करे है वह है लखपति दीदी योजना। और अंडो उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्र री जो बेना है वना ने स्वरोजगार कौशल विकास और आर्यवर्धन रे माध्यम और सालाना 1 लाख रुपया वनी अधिक रे आय अर्जित करवा वास्ते प्रोत्साहित कर रहे हैं।
0: लखपति दीदी योजना देखो खास रूपो स्वयं सहायता समूह जुड़ी तकी जो बेना है वना पे केंद्रित है। अणा बेना ने कृषि आधारित गतिविधियां पशुपालन डेयरी उद्योग खाद्य प्रसंस्करण सिलाई कढ़ाई हस्तशिल्प अगरबत्ती निर्माण मसाला उद्योग दूजा जो कई लघु उद्यम है वना ने जोड़ने अपनी आय बढ़ावारो प्रयास भी है सा।
1: बिल्कुल भाई साहब, देखो लखपति दीदी योजना जो है बेना ने आत्मविश्वास बढ़ावारो काम करे। ग्रामीण क्षेत्र में योजना सकारात्मक परिणाम अंडा देखवाने मिली रहा है और कई बेना जो है स्वरोजगार अपने न केवल अपनी आय बढ़ाई रही है बल्कि दूजी महिला जो है वड़ा ने भी रोजगार का अवसर उपलब्ध कराई रही है।
0: और देखो सरकार रो ये लक्ष्य है कि वत्ती वत्ती बेना स्वयं सहायता समूह रे माध्यम उजूर ने लखपति दीदी बने और अपने परिवार री आर्थिक स्थिति ने सुदृढ़ करे। अंडे वास्ते देखो विभिन्न विभाग और संस्थार द्वारा टेम टेम पे प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम भी आयोजित करिया जा रहा है।
1: बिल्कुल भाई साहब, यह योजना जो है केवल आय बढ़ावारो माध्यम नहीं है बल्कि बेना ने आत्मनिर्भर आत्मविश्वासी और सशक्त बनावारो एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: तो देखो या तो आपा लखपति दीदी योजना कई सरकार चलाई रही है बताई और अबे आपको तो एक संदेश सुन लेवा।
1: बिल्कुल सोना सा
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी?
4: हाँ।
3: नहीं झुमके? ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
1: तो वैसा देखो आप लखपति दीदी योजना की जानकारी दीदी वंडा बाद आप संदेश सुनिया और अबे कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अपने बेना रे स्वास्थ्य री बात करा कि जो महिला स्वास्थ्य है वनी और आयरन युक्त जो भोजन है वनी रही कई भूमिका रे वे
0: आप देखा सा कि देखो स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज री आधारशिला वे। लेकिन अक्सर देखियो गयो कि अपनी बेना अपने परिवार री देखभाल में अति व्यस्त रहे कि अपने स्वास्थ्य पे पर्याप्त ध्यान नहीं दे सके। और अंडो परिणाम तो आपा सब जाने जा कई वे वे भाई बेना में आयरन री कमी वे जावे एनीमिनिया री समस्या वे जावे और अन्य तरह कई रोग जो है वना ने घेर ले वैसा
1: देखो आयर...

0: आपणा शरीर वास्ते घणो जरूरी खनिज तत्व है। यो आपणा जो खून में जो हीमोग्लोबिन वणावरो जो काम करे है, अने यूं कही एक शरीर में जो दूसरा जतरा भी अंग है वणा तक ऑक्सीजन पहुंचवा में मदद मिले है। जनार शरीर में आयरन री कमी वे जावे तो हीमोग्लोबिन रो स्तर कम वे जावे और व्यक्ति जो है एनीमिया रो शिकार वे जावे है।
1: बेना में देखो आयरन री कमी रा कई कारण वे सके, जिससे कि देखो मासिक धर्म रे दौरान रक्त स्त्राव, गर्भावस्था और स्तनपान संतुलित भोजन री कमी और पोषण रे प्रति जागरूकता रो अभाव, ये सब जो है खास कारण है। और आयरन री कमी वेवा पे देखो कमजोरी आए, थकान, चक्कर आनो, माथो दुखनो, सांस फूलनो, ये सब समस्या वेवा लागे सा।
0: और आना समस्याओं बचवा वास्ते आपने बेना ने दैनिक भोजन में आयरन युक्त तो खाद्य पदार्थ बनाने शामिल करना चाहे, जैसे उनकी हरी पत्तेदार सब्जियां है, पालक, मेथी, सरसों, चौलाई, ये आयरन का अच्छा स्रोत हैं। अंडे अलावा चना, राजमा, लोबिया, मूंग, मसूर, सोयाबीन और भात भातरी जो दाला है अणा में भी पर्याप्त मात्रा में आयरन मिल सके है।
1: गुड़ और तिल रो सेवन भी आयरन री कमी ने दूर करवा में बहुत लाभदायक मान्यो गयो है। सूखा मेवा में किशमिश, खजूर, अंजीर शरीर में आयरन मिले। बाजरा और रागी जैसा जो मोटा अनाज है ये भी आयरन भरपूर वेवे, और अनारो नियमित आहार में शामिल अगर कर लांगा तो आयरन री कमी नहीं वेगा, अपने खून में जो है बढ़ोतरी वेगा।
0: आयरन रे साथे साथे वैसा विटामिन सी रो सेवन भी आवश्यक है, क्योंकि यो शरीर में आयरन रो अवशोषण ने बढ़ावे। अणि वास्ते भोजन रे साथ में आपाने नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी, अमरूद और टमाटर रो सेवन करनो लाभदायक वेवे है।
1: यह भी खास बात है कि देखो आपा जो भी खानो खाई रहा मंडे तुरंत केड़े चाय या कॉफी रो सेवन नहीं करनो चाहे, क्योंकि अणि में देखो आयरन ने अवशोषण में बाधा ना के या चीज, और विशेषज्ञ भी कहवे कि भोजन रे कम कम एक घंटा बाद चाय या कॉफी लेवारी सलाह देवे सा।
0: और आपने जो बेना गर्भवती है वनाने खास रूपों आयरन युक्त भोजन पे ध्यान देना चाहे, चिकित्सा द्वारा चिकित्सक जो भी देवे वे आयरन फोलिक एसिड जो गोलियां नियमित रूप लेनी चाहे और समय समय पे स्वास्थ्य जांच बनाने करनी चाहे।
1: तो आपा तो यो इच कहंगा कि भाई स्वस्थ शरीर जीवन री सब बड़ी पूंजी है। अगर बेना अपने भोजन में पौष्टिक और आयरन युक्त खाद्य पदार्थ में शामिल करेगा तो एनीमिया जैसी जो समस्या है अणि बच सकेगा, स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान जीवन जी सकेगा सा।
0: बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया यह जानकारी ही। और देखो वाता करवाने तो नरो ही है आपा आवा कार्यक्रम में ने, तो आपा यूं लगे कि आपा बात करता ही रहवा और आपानी बेना ने जानकारी भी देवा, गीत भी सुनावा, मनारो मनोरंजन भी करा। पर देखो घड़ी आड़ी देखा तो एक तय सीमा में आपा ने कार्यक्रम खत्म करनो वेवे, तो देखो घड़ी आड़ी देखी रहा तो आपने कार्यक्रम चालवारो टाइम वे गयो, तो चाला सा
1: राम राम सा।

सहेलियारी बाड़ी, ये कार्यक्रम अभी हमारे श्रोताओं ने सुना। श्रोताओं, आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर के मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:45 हुए हैं। आइए एक बार फिर से आपको लिए चलें गीत संगीत के सफर पर। कार्यक्रम है फिल्म संगीत।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: ये आवाज़ें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की फिल्म का नाम खेल खेल में।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मेरे सनम, ये था फिल्म का नाम जिस जिसका गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी आशा भोसले जी की।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह का गाया ये गाना था, फिल्म का नाम था बॉबी। आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला गीत आपको सुनवाते हैं एक दूजे के लिए। इस फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने इसे गाया है।

एक ही रास्ता, इस फिल्म का गीत अब आप सुनने जा रहे हैं और ये होगा आज की फिल्म संगीत का आखिरी गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, हेमंत कुमार की।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप साथ हैं आकाशवाणी उदयपुर की मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:10 हुए हैं। प्रस्तुत है विकास चर्चा। आज की योजना का नाम है लखपति दीदी योजना। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, ताकि उनकी सालाना आय कम से कम 1 लाख रुपए हो सके। प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहले कौशल प्रशिक्षण। महिलाओं को सिलाई, मशरूम की खेती, एलईडी बल्ब बनाने और ड्रोन संचालन जैसे विभिन्न कामों की ट्रेनिंग दी जाती है। 5 लाख रुपए तक का लोन। खुद का नया व्यापार या व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का आर्थिक ऋण प्रदान किया जाता है, जिस पर महिलाओं को काफ़ी कम या बिना ब्याज के लाभ की सुविधा दी जाती है। आय का लक्ष्य।

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक आय स्थायी रूप से कम 1,00,000 रुपए या 10,000 रुपए मासिक हो सके। लखपति दीदी योजना के लिए कौन सी महिलाएं पात्र होंगी, इस पर गौर करें तो आवेदक महिला की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला का ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह या दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ा होना अनिवार्य है।

लखपति दीदी योजना में आवेदन करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, इसकी जानकारी आप भी आपको दे दें। आधार कार्ड और पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्वयं सहायता समूह की सदस्यता का प्रमाण पत्र।

यदि आप इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी बैंक, आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, यदि जानकारी लखपति दीदी योजना की, और इसी के साथ आज की विकास चर्चा यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

0: छात्र वृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
0: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
0: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना

0: किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट

0: के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हुए हैं। हमारे किसान भाई अब सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम अनुश्री भैसा, राम राम।
1: राम राम नीता भैसा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाई बहना ने अपनो
1: राम राम सा।
0: देखो सा अनुश्री भैसा, कार्यक्रम में आवा किसान भाइयों रे वास्ते भांत भांतरी जानकारी लावा, और देखो लारे मनोरंजन करनो भी नहीं भूला। और आज देखो कार्यक्रम में लाया कि भाई अबाणो जो है किसान भाई खेत री तैयारी कर रहा है, क्योंकि आगे खरीफ फसल री वावणी रो काम भी करनो है। तो खेत री तैयारी रे महीने खेत री घेरी जुताई रो महत्व कई है, आज अणी बारा में बतावा सा।
1: हाँ, जानकारी लेना आया भाई सा। देखो खेत री जुताई सबू बढ़िया चीज यही से कि जना खेती बाड़ी रो काम वेवे तो जुताई सबू पहली करी जावे और वनडो महत्व सबू ज्यादा वे। देखो कृषि भूमि में तैयारी अगर आप करा तो फसल उत्पादन रो सबू पहलो और महत्वपूर्ण चरण ही इस वे। सामान्यतः आप देखा कि मिट्टी री ऊपरी परत जो वे 3-4 इंच री जुताई तो हर सीजन में करी जावे, पर कल्टीवेटर डिस्क और कल्टीवेटर री जुताई तो हर या तो करें ही सा, लेकिन कल्टीवेटर डिस्क हैरो और मोल्ड बोर्ड प्लाट री मदद हो आप मिट्टी ने 8-12 इंच या आणियों वत्ती गहराई तक पलटवों, कही है कि गहरी जुताई करनो केला।

0: है यो।
1: और देखो यह प्रक्रिया आमतौर में गर्मी रा जो मौसम है, रबी फसल री कटाई रे केड़े और खरीफ री बामनी रे पहला आपा करा हाँ। और खेत में गहरी जुताई रा खूब सारा लाभ है, जो नी केवल मिट्टी रे स्वास्थ्य ने सुधारे, बल्कि देखो फसल री जा पैदावार है वहीं पे भी सीधे तौर पे जो है प्रभावित करे सा।
0: सही बताई रहा हो सा। देखो के खेत री गहरी जुताई रा घना लाभ है। लगातार हल्का कल्टीवेटर चलावाऊं, ट्रैक्टर ने बार बार खेता में घुमाऊं, कई मिट्टी रे नीचे 6 से 8 इंच री गहराई पे एक कठोर परत बन जावे। या परत पौधा री जड़ा ने नीचे जावाऊं रोके है। अगर आप गहरी जुताई करा तो कही है कि यह कठोर परत टूटी जावे, जड़ियों की एक मिट्टी भुरभुरी वे जावे और पौधा री जड़ा आसानी गहराई तक जैन पोषक तत्व ने पानी ने सोखी लेवे है।
1: और देखो गहरी जुताई मिट्टी रा जो छेद है वी भी खुल जाएगा, वंडी सघनता कम वेगा और अणियों कही वेगा कि मानसून रे दौरान वर्खा रो पानी जमीन री जो है ऊपरी सतह बेई ने बर्बाद नहीं वेगा, बजाय कि सीधे जमीन रे महीने समय जाएगा। और देखो मिट्टी में नमी लंबा टाइम तक वणी तकी रहेगा, जणियों सुखारी स्थिति में भी फसल ने सहारो मिलेगा और भूजल स्तर सुधारवा में भी मदद मिलेगा।
0: और देखो सा लगातार सतही जुताई करवाऊं कही है कि मोथा दूब और जंगली जई जैसे जो जिद्दी खरपतवार है अनारी जड़ा और जो बीज है पर मिट्टी री निचली परता में सुरक्षित मचा रहे हुए। तो वे कही है कि गहरी जुताई अना खरपतवार आरी जड़ा गांठा बीज बाणे ए जावे और मई जून री तेज धूप जैसे अबारू पड़ी रही है वणी मेरे संपर्क में आवाऊं कही पूरी तरह सूखी नष्ट हो जावे। जणियों कही है कि अगली फसल जो है वाह बढ़िया वेवे और खरपतवार प्रकोपों 70 से 80% तक कम वे जावे है।
1: और देखो फसला ने नुकसान पहुंचावा वाला कई हानिकारक कीड़ा है, जैसे कि सुंडियाँ, तम्बाकूरी सुंडी, गुलाबी सुंडी, कवक और मिट्टी रे नीचे प्यूपा और अंडा है अनारे रूप में सुप्त अवस्था में रहवे। यदि खेत री गहरी जुताई करांगा तो ई कीड़ा और अनारा अंडा जमीन रे ऊपर आई जाएगा और अणियों कही है कि ये नष्ट हो जाएगा।
0: और भाई सा देखो ज़्यादा गर्मियों का ही है कि ये नष्ट हो जावे। आप देखा बगुला कौआ और दूजा जो पक्षी वेवे ये खुला में आई नाना कीड़ा ने खाइन खेत ने साफ कर देवे। अणियों का ही है कि कीटनाशकों वेवा वालों जो खर्च है वो भी घटी जावे है।
1: और देखो पौधा री जड़ा ने बेहतर विकास रे वास्ते ऑक्सीजन री जरूरत वे, गहरी जुताई मिट्टी ढीली वे जाएगा, जड़ियों वण में हवा रो प्रभाव बढ़ जाएगा, हवादार मिट्टी में फसला री जड़ा तेजियों सांस ले सके, जड़ियों कहिए वणारो विकास मजबूत वेगा और पौधा रो तनों भी जो है वो मजबूत बनेगा सा।
0: और देखो भाई साहब आप देखा हाँ कि अगर कहीं भी खेत में लगातार खेती करवाऊँ कही वे कि रासायनिक खादा रा इस्तेमाल हूँ कही एक ऊपरी मिट्टी रा जो पोषक तत्व वे धीरे धीरे खिसकिन या रिसिन नीचे पर आ जावे। जेणियों कही है कि सामान्य फसला तक वे नहीं पहुँचे सके और गहरे जू कही वे कि नीचे दबिए तक की जो उपजाऊपन है पोषक तत्व है वे मिट्टी रे ऊपरे आई जावे। अणियों कही है कि मिट्टी रे पलटवाऊँ ऊपरी परत में भी मौजूद जैविक अवशेष है वे पाछली फसल रे कारण या जैसे ठूंठ है ये सब है नीचे जैन हरी जावे। जणियों कही है कि बेहतरीन कंपोस्ट में ये बदल जावे है।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हो सा अनुश्री भाई सा। और देखो मिट्टी में कई तरह रह जो सूक्ष्म जीव और केंचुआ वेवे, जो जैविक खाद ने पौधा ने ग्रहण करवा में योग्य बनावे और वणी में बदल देवे, उचित वायु संचार और नमी मिलवारे कारण अणा मित्र जीवाणु और जो कार्य क्षमता है और संख्या है वणा में भी देखो बहुत ज़्यादा वृद्धि वेवे, जो कि मिट्टी री जैविक शक्ति ने बढ़ावे है सा।
0: देखो भाई सा कई वो नहीं कहवे कि हींग लागिन फटक री रंग आयो चोखो वणी वाली बात है कि देखो खेत री जो गहरी जुताई है या कम लागत में वेवा वाली एक बेहद प्रभावी तकनीक है। और अणी में कही है कि बिना कणी और विशेष खर्च कीदा तका आप अणी रो लाभ ले सको। या बिना कणी अतिरिक्त रासायनिक इनपुट रे मिट्टी री सेहत सुधारे, पानी बचावे और फसला ने जो बीमारियों सुरक्षित राखवारो एक प्राकृतिक तरीको इन्हें आप मान सका। हाँ
1: तो देखो अणी तरीकों अबार जना किसान भाई नी करी है मिट्टी री गहरी जुताई भी अबाणू भी कर सके और मिट्टी ने उपजाऊ बनाई सके, ताकि जो मेहनत कर रहा है भी वणानी मेहनत जो है आवा वाला फसल लेगा वणी टाइम पे उत्पादन बत्तो वेगा और वणारी मेहनत बेकार नहीं जाएगा जा।
0: बिल्कुल भाई साहब। और अगर मेहनत बेकार नहीं जावेला तो हाउ आमदनी वेला आवे तो घर में देखो खुशियाँ आवेला और खुशियाँ आवेला तो अपना किसान भाई जो है थोड़ा सो मनोरंजन भी करना चावेला, गीत संगीत दुनिया में जैन गीत गुनगुनाना चावेला। और वंडे वास्ते जरूरी है कि कटे गीत वाजे तो

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: तो भाई साहब बढ़िया, सो आप गीत सुनाए और गीत सुने ना पाचा कार्यक्रम आया। अबे आप आने किसान भाई वास्ते कई जानकारी है सा?
4: देखो सा, जून रो महीनो चल रो और अनी महीना में खेती बाड़ी रा किसान भाई ने कई कई काम करना है। यो बतावा कि भाई रबी फसलारी बिक्री और भंडारण रो काम अंतिम चरण में भी रो है, बट इस दूसरी ओर देखो मानसून रे आगमन रे लारे खरीफ फसलारी वामनी और प्रबंधन रो काम भी शुरू हो जावे। तो अनी महीना में अपने बेहद सतर्क रहना है, फसल उत्पादन ने प्रभावित कर सके, वरना अपनी थोड़ी सी चूक तो जून रे महीना में आप किस तरह फसलवार काम करा यो बतावा सा।
3: हाउ जानकारी लाया सा भाई सा, देखो जून रा महीना मीने आप कई कई फसला ले सका और वरना कई करनो। देखो मुख्य खाद्यान्न जो है, जो खास फसला है वनारी बात करा, देखो धान, मक्का, बाजरा, ज्वार। अगर आप देखो धान री खेती री बात करा तो जून रा महीना में धान री नर्सरी तैयार करवा रे और अगेती किस्म री रोपाई रे वास्ते सब महत्वपूर्ण यो मान्यो जावे है।
4: और नर्सरी यानी कि पौधशाला रो प्रबंधन आपने करना है। अगर मई रे अंत में नर्सरी नहीं ना कि वे किसान भाया तो जून रो यो पहलो सप्ताह चाल रो है अण में धान री नर्सरी जरूर आपने कर लेनी है। प्रति हेक्टेयर रोपाई रे वास्ते लगभग 700-800 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी जो है वह पर्याप्त रहेगा।
3: और देखो अंडे अलावा आप बात करना बीजो उपचारी, तो देखो बुवाई हूँ पहली बीजा ने फफूंद नाशक जैसे यान की बोविस्टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम रे हिसाब हुई या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो वेवे वंडो उपचारित करना है ताकि जो बनारी सड़न है और झुलसा रोग बनाने आप बचे ही सका।
4: बासमती और सुगंधित किस्म की बात आप करा तो देखो जून रा दूसरा पखवाड़ा यानी 15-30 जून रे बच्चे बासमती धान री नर्सरी नाकवारो यो सर्वोत्तम टाइम है। श्री विधि जिसरे की अगर सिस्टम ऑफ राइज अगर विधि अपनाई रे हाँ तो 10-12 दिनारी पौधरी रोपाई जून रे अंत तक आपने शुरू कर देनी है सा।
3: सही बात है सब ऐसा हो। देखो पानी री कमी वाला क्षेत्र में जून रा प्रथम सप्ताह में और जून रा दूसरा सप्ताह में जो ड्रम सीडर और जीरो टिलर रे धान रे सीधी बुवाई आपने पूरी कर लेनी है। अणु कही है कि खरपतवार नियंत्रण रे वास्ते बुवाई रे 24 घंटा रे महीने पेंडी मेथालीन रो छिड़काव भी आपने करनो छावे।
4: और रोपाई री तैयारी री बात करना तो जून रे अंतिम सप्ताह में जदि पौध 21-25 तनरी भेज जावे बदी खास खेत में कड्डू करने रोपाई शुरू कर सका और एक जगह पे 2-3 पौधा लगाना चाहे सा।
3: अब ये बात करा देखो आप मक्की रे फसल री, तो देखो मक्का रे खेती री बात करा तो बुआई रो समय जो है इनमें खरीफ मक्का री बुआई रे वास्ते 15-30 जून रो समय सबू बढ़िया मान्यो जावे। मानसून री पहली बारिश रे ठीक बाद आपने बुआई कर लेनी है। और उन्नत किस्म री बात करा तो अपना क्षेत्र रे अनुसार संकर या पचे संकुल किस्म जिसे यानी कि गंगा 11, सरताज

0: प्रकाश अनारोप चयन कर सका हाँ।
1: दूरी और बीज दर की बात करा अनुश्री भाई साथ देखो कतारू कतारी दूरी 60 सेंटीमीटर पौधों पौधारी दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है। बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहेगा। बुआई रे टाइम पे नाइट्रोजन री एक तिहाई मात्रा फास्फोरस और पोटास री पूरी मात्रा खेत महीने नाक देनी है और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग मक्का में सफ़ेद कली रोग यो रोके अंडो प्रयोग अपने कर लेनो ऐसा।
0: देखो आगे आप बात करा भाई साहब बाजरा और ज्वार री तो देखो बाजरा री बुवाई जो है जून रा अंतिम सप्ताह में विशेष कर देखो पश्चिम भारत और जो हुका क्षेत्र है वनारे वास्ते है कि बाजरा री बुवाई शुरू कर देनी है। बीज दर अपन 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर प्रति हेक्टर अपने रखना है। वटिस अगर आप ज्वार री बुवाई री बात करा तो चारा और दाना दोया रे वास्ते जून रे मध्य में या पे मध्यम अंत तक ज्वार री बुवाई अपने कर लेनी है और जल भराव वाला खेत में अंडी बुवाई वचनों है क्योंकि ज्वार जो है जल भराव रे प्रति संवेदनशील रेवे है।
1: और जून रा महीना में और कई कई खेती बाड़ी रा काम करना है अनुश्री भैसा यह जानकारी किसान भाई ने करा वहाँ बट पहली देखो जानकारी रह ला रहे गीत संगीत भेजा है तो कसो रे
0: बढ़िया रेवे सा आप चाह रहा हो कि आपने किसान भाई ने आप बाता रे वचमी ने थोड़ो सो मनोरंजन कराई दा तो बिल्कुल करावा सा और सुनावा एक बढ़िया सो राजस्थानी गीत।

0: तो भाई साहब देखो बढ़िया सुगीत सुनियो और अबे आप आने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सा।
1: हाँ सा, और देखो गीत रे लारे जानकारी कराई रे। हाँ आपा कि भाई जून महीना में खेती बाड़ी रा कई कई काम करना है, तो फसल उत्पादन रिवाज की दी। अबे देखो थोड़ी बागवानी रिवाज भी करना कि बागवानी में किसान भाई कई कई काम करे, तो बेर में देखो काट छाट कर देनी है जड़े हूँ नया जो प्ररो है विभत्ति संख्या में फूल और फल आई सके। काट्या तका स्थान पे देखो फफूंद नाशी बोरडॉक्स मिश्रण रो लेप भी आपने कर देनो है।
0: और देखो अगर नींबू वर्गीय फलदार पौधा में फल गिरवारी समस्या री रोकथाम रे वास्ते आपने प्लेनोफिक्स हार्मोन रो 3 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में गोल वनेन अपने छिड़काव करनो है।
1: और नींबू वर्गीय पौधा में इस देखो पर्ण खाना किया बच्चे सिस्ट्रिस सिल्ला कीड़ा री रोकथाम रे वास्ते एसीफेट 75 SP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या पचे मिथाइल डिमेटोन 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी री दरुँ गोल बनाईने स्प्रे कर देनो है।
0: यह तो है ही से भाई साहब। देखो बाग में इन्हें फल रे पौधा रे ला रहे छायादार और शोभाकारी पौधा भी वे तो वृक्ष भी वे तो छायादार और शोभाकारी वृक्ष जो है वनारे वास्ते फलदार वृक्ष री तरह ही रेखांकन करीना आपने गड्ढा खुदाई कर लेना है।
1: ताकि देखो मानसून आएगा वंडे लारे सोयाना गड्ढा में वामनी आपा कर सका। और फलदार पौधा ने लगावारे वास्ते 1 बाई 1 बाई 1 मीटर आकार रा गड्ढा खोद ने 10 उ 15 दिन तक खुलो छोड़ देनो है। प्रति खाड़ा रे हिसाब हूँ देखो 15 उ 20 किलो गोबर री खाद मिलाई देनी है। पौधा लगावारे पहली 100 ग्राम क्यूनल फॉस 1.5% या पचे इंडोसल्फोन 4% चूरन प्रति खाड़ा रे हिसाब हूँ मिलाई देना ऐसा।
0: और देखो आंवला में ने अपने बोरेक्स रो 0.4%, जिंक सल्फेट रो 0.2% रो गोल वने छिड़काव करना है। और बेर रा पौधा में वर्षा रे प्रारंभ में इस खाद और उर्वरक अपने दे देनी चाहिए।
1: नींबू में कैंकर रोग रे बचाव रे वास्ते बोर्डो मिश्रण या पचे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवाई 4 उ 5 लीटर पानी में घोल बनाईने 20 उ 25 दना रे अंतराल पे छिड़काव कर देनो ऐसा।
0: और देखो अंगूर जल्दी पकावार वास्ते मिठास बढ़ावार वास्ते एथिफोन 50 मिलीलीटर रे लारे आपने बोरेक्स 100 ग्राम और 100 लीटर पानी में इन्हें गोलिन पकवारे 15 दिन पहले छिड़काव करना है। अणि समय सिंचाई आपने पूर्णतः बंद रखनी है।
1: साग भाजी री बात करें तो देखो कुष्मांड कुलरी साग भाजी में कद्दू बीटल और हाड़ा बीटल री रोकथाम रे वास्ते 2 मीटर 30 CC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर रे दरुँ छिड़काव कर देनो है।
0: और कुकर बीट्स है, बैंगन है, टमाटर है। अणा में देखो माइट्स री रोकथाम रे वास्ते आपने फार्मोथियान 25 EC या मिथाइल डिमोटोन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर या फचे डाइकोफोल 18.5 EC

0: या 1.25 मतलब 1.25 लीटर प्रति हेक्टरी दरों अपने स्प्रे करनो है।
1: कुष्मान कुलरी साग भाजी में फल माखी री रोकथाम रे वास्ते मेलाथियान 85 cc 1.25 लीटर पानी में प्रति हेक्टरी दर में स्प्रे कर देना है सा।
0: देखो फूल गोभी री अगेती किस्म अर्ली कुंवारी रो 650 ग्राम बीज प्रति हेक्टरी दर नर्सरी अपने तैयार कर लेनी है। बीजा री बुआई उठी तक की रहनी छावे क्यारी में करनो है अपने। और थाइर सरम जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम री दर बीज उपचारित अपने करी काटना है।
1: भिंडी री खरीफ फसल री वामनी जून महीना में आपा कर सका। भिंडी री अर्का अभय परबनी क्रांति पूसा मखमली पूसा सामनी अर्का अन्नामिका ये सब किस्म हवरे वे 10 से 12 किलो बीज प्रति हेक्टेयर री दरू वामनी करनी है सा।
0: और देखो वर्कारी ऋतु रे वास्ते अपने टमाटर री अविनाश 2 रूपाली पूसा शंकर 1 और 2 कर्नाटक हाइब्रिड सोनाली पूसा 120 पूसा रूबी अली डरवा किस्म रो चयन अपने करी काढ़नो है।
1: और वर्षा री संभावना रे मद्देनजर देखो साग भाजी में सिंचाई स्थगित कर देनी है और रसायन रो छिड़काव मौसम खुलवारे वणी टेम पेज करनी है सा।
0: अंडला रे देखो वैसा ये तो आप खेती बाड़ी री बात करी रहा। हाँ साग भाजी री इन सब जो बात बताई है बागवानी री बात बताई है। अब आप थोड़ा सो पशुपालन और दूध उत्पादन री तरफ बढ़ा क्योंकि यो भी अपने किसान भाई रे वास्ते एक मोटो काम है। तो देखो अपन पशुओं ने गर्मी री तीव्रता ने देखता तका चराई रे वास्ते अब अपने सुबह 6 बजे 11 बजे तक और हांजरा अपने 4 बजे 7 बजे तक इस निकालना है।
1: गर्मी रे मौसम में देखो मवेशियों रे वास्ते पर्याप्त पीवारो पानी री व्यवस्था भी अपने कर देनी है। और मवेशियों ने देखो कृमियों बचावारा कृमिनाशक दवाई भी पावनी है। मवेशियों ने टेम टेम पे देखो कई संक्रामक बीमारियां जिससे कि खुरपका मुरपका ब्रिसेलोसिस HS एंथ्रेक्स भेड़ और बकरी में माता रोग री रोकथाम रो टीकाकरण भी अपने कराई देनो है। तो देखो किसान भाई ने यह जानकारी दी थी और आने रे लारे देखो घड़ियाड़ी देखा तो अपने कार्यक्रम रो टेम भी वेग्यो तो चाले सा।
0: राम राम सा।
2: कृषि जगत कार्यक्रम अभी हमारे श्रोताओं ने सुना। ये आकाशवाणी उदयपुर है। दिन के 3 बजने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
4: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
3: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
4: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं और उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 3:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की ये दोपहरकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा के प्रसारण लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग खम्मागणी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं माहिन खाना, आज मेरे साथ है कशिश महेश्वरी, और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आप श्रोताओं को ओवरव्यू देते हैं कि आज हम किन किन टॉपिकों पे बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे डेटा सेंटर्स, ट्रैवल डायरीज, बर्थ एनिवर्सरी, हिस्ट्री और बहुत कुछ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम डेटा सेंटर्स के बारे में। डेटा सेंटर्स एक ऐसी जगह है, बिल्डिंग या रूम होती है, जहाँ बहुत सारे सर्वर्स यानी कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस रखे जाते हैं, जो डेटा को स्टोर, प्रोसेस और मैनेज करते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये इंटरनेट का गोदाम यानी डिजिटल वेयरहाउस है।
1: डेटा सेंटर उन कंप्यूटर सिस्टमों का भौतिक घर है जो हमारे दैनिक जीवन को संचालित करते हैं। आज लगभग हर व्यावसायिक और व्यक्तिगत बातचीत के लिए डाटा का इलेक्ट्रॉनिक का आदान प्रदान होना आवश्यक है।
0: जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि फ़ोन करना, किताब पढ़ना या टीवी देखना जैसे पारंपरिक कार्य भी अब काफ़ी हद तक डिजिटल हो गए हैं। नए डिजिटल जानकारी की इस लगातार बढ़ती मांग के लिए भारी मात्रा में कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग जैसे बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। उन्हें डेटा केंद्रों में एक जगह इकट्ठा करते हैं,
1: जैसे हाई डिस्क, सॉलिड स्टेट और रोबोटिक टेप ड्राइव जैसे स्टोरेज डिवाइस। किसी भी डेटा सेंटर को इन सतर्कों को चलाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: और अब बात करते हैं कि डेटा सेंटर्स में क्या क्या होता है। हाँ, सर्वर्स होते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं, स्टोरेज सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा रखते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, कूलिंग सिस्टम मशीनों को ठंडा रखते हैं, और पावर सप्लाई जो 24 आवर्स बिजली के लिए यूज़ होता है।
1: और जब हम व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तब आपका रिक्वेस्ट डाटा सेंटर तक जाता है, वहाँ से डाटा प्रोसेस होकर आपके मोबाइल में आता है।
0: और हम बात करते हैं कि डेटा सेंटर्स भी बहुत डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे एंटरप्राइज डेटा सर्विस जैसे बड़ी कंपनियां यूज़ करती हैं, क्लाउड सेंटर डेटा जैसे ऑनलाइन सर्विसेज में यूज़ होता है, और एक और होता है कोलोकेशन डेटा सेंटर जो अलग अलग कंपनियां स्पेस रेंट पर लेती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: मानव का विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन एक लंबी और बहुत ही रोमांचक प्रक्रिया है। लगभग 60 लाख साल पहले हमारे वानर जैसे एंसेस्टर्स से होमो सेपियंस का विकास हुआ। मानव विकास का मतलब है कि पुराने जीवों से धीरे धीरे बदलकर आज का आधुनिक इंसान बना।
3: यह थ्योरी सबसे पहले साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने दिया था, जिसे विकासवाद थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं।
2: और ऐसी कई थ्योरी दूसरे साइंटिस्ट ने भी दी, जैसे लेमार्किज्म, द बिग बैंग थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, न्यू डार्विनिज्म, जीन फ्लो, और ऐसी कई सारी थ्योरियों से हमें ह्यूमन एवोल्यूशन का पता चला। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी मानव विकास आसानी से नहीं हुआ, विकास अलग अलग चरणों में हुआ। जैसे वैसे ही शरीर, दिमाग और व्यवहार में भी बदला आया गया। और सबसे पहले हम बात करते हैं एवोल्यूशन का, जिसके अंदर ड्रायपेथिकस की हम बात करते हैं। लगभग 1.5 से 2 करोड़ साल पहले इनको पाया गया और मानव के ये सबसे पुराने पूर्वजों में से हैं। और फिर आए, इनके बाद जो आए हैं उनका नाम है रामापेथिकस। फिर इनके बाद आए हैं ऑस्ट्रेलोपेथिकस, जो कि लगभग 40 से 20 लाख साल पहले। और इनमें जो खासियत थी, ये सीधे चलने की शुरुआत सबसे पहले इन्होंने की थी। दिमाग इनका

0: छोटा था लेकिन इंसान जैसा शरीर रहा, और इसके बाद आए होमो हैबिलिस लगभग 20 से 15 लाख साल पहले। इनको कहते हैं पहला हुनरमंद इंसान, और पत्थर के औजार बनाना शुरू करा, और इसके बाद आए होमो इरेक्टस, इसके बाद नियंदरथल, और इसके बाद आए हैं होमो सेपियंस। और जब हम बात करते हैं सबसे एडवांस, जो कि हम बात करते हैं पैकिंग मैन, प्राचीन मानव प्रजाति होमो इरेक्टस की, जो एक फेमस एग्जाम्पल है, और इसके अवशेष ज़ूकोडियन चीन में मिले थे। वैज्ञानिकों को प्रमाण मिला है कि पैकिंग मैन लगभग 7 लाख वर्ष पहले आग का उपयोग करते थे।
1: जी हाँ, यानी आग का आविष्कार पैकिंग मैन के द्वारा हुआ, लेकिन यह प्रश्न अभी भी चर्चा का विषय है कि क्या उसने स्वयं आग जलाना सीखा था या केवल प्राकृतिक आग का उपयोग करा। बात करते हैं जीवन शैली की। पैकिंग मैन गुफाओं में रहते थे, उन्होंने जानवरों के शिकार के लिए पत्थर और हड्डियों से बने औजारों का इस्तेमाल करना सीखा, या शिकार करते थे और केवल मृत जानवरों का मांस खाते थे।
0: और उसकी सामाजिक व्यवस्था और भाषा की क्षमता की बात करें तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। उनकी खोपड़ी आधुनिक इंसानों यानी होमो सेपियंस से काफ़ी अलग थी। उनका सर छोटा और पीछे की तरफ झुका हुआ था, जबकि भौहें और जबड़े काफ़ी मोटे और भारी थे। पैकिंग मैन की खोज ने यह साबित करने में मदद की कि प्राचीन काल में इंसानों का विकास और फैलाव एशिया तक हो चुका था, और इन गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया।

0: आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की एक ऐसी पवित्र भूमि पर जहाँ ज्ञान, शांति और आत्मबोध का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह वह स्थान है जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या और ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त कर भगवान बुद्ध का स्वरूप धारण किया। जी हाँ, आज की हमारी मंजिल है बिहार राज्य का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बोधगया।
1: बोधगया बिहार के गया में स्थित है। ये दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से माना जाता है। यहीं पर लगभग 2500 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया और वे गौतम बुद्ध कहलाए। इसी कारण यह स्थान विश्व भर के लिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र बन गया।
0: और कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने इस स्थान पर कई सप्ताह ध्यान और चिंतन में बिताए। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक यहाँ आए और उन्होंने बुद्ध की स्मृति में एक मंदिर और स्मारक का निर्माण किया।
1: और बाद में यही स्थान विकसित होकर भव्य महाबोधि मंदिर परिसर के रूप में प्रसिद्ध हुआ।
0: यह मंदिर लगभग 55 मीटर ऊंचा है और भारत के सबसे प्राचीन ईंट निर्मित मंदिरों में गिना जाता है। मंदिर परिसर को वर्ष 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। मंदिर के भीतर बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित है जहाँ देश विदेश में आने वाले श्रद्धालु ध्यान और प्रार्थना करते हैं।
1: और मंदिर के साथ साथ मुचलिंडा लेक बौद्ध गया का एक अत्यंत आकर्षक स्थल है। कहते हैं कि जब बुद्ध ध्यान में लीन थे तब भारी वर्षा हुई, तब नागराज मुचलिंडा ने अपने फन फैलाकर बुद्ध की रक्षा की और आज इस सरोवर के बीच बुद्ध की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। ग्रेट बुद्ध स्टैच्यू को बौद्ध गया का एक प्रमुख आकर्षण भी कहलाया है।
0: और लगभग 80 फीट ऊंची यह प्रतिमा गुलाबी पत्थरों से निर्मित है और ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध का भव्य स्वरूप प्रस्तुत करता है। यह स्थान पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय है।

आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के उस महान शोमैन की जिसने हिंदी फिल्मों को नई पहचान दी, एक ऐसे कलाकार जिसने अभिनय, निर्देशन और निर्माण तीनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के शोमैन कहलाने वाले एक महान कलाकार राज कपूर की। उनकी मुस्कान, उनकी अदाकारी, उनके गीत और उनकी फिल्में आज भी करोड़ों दिलों में जीवित है। आइए जानते हैं उनके जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों और भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के

0: बारे में?
1: राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ था। वे प्रसिद्ध अभिनेता रंगकर्मी पृथ्वीराज कपूर के पुत्र थे। राज कपूर का पूरा नाम रणबीर राज कपूर था। बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय और फिल्मों की ओर था। उन्होंने बहुत कम उम्र में कई फिल्मी दुनिया में कदम रखा और आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बने।
0: जी हाँ, राज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत क्लेपर बॉय और सहायक के रूप में की। सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी आरके फिल्म्स की स्थापना की। 1948 में आई फिल्म आग उनके निर्देशन की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
1: राज कपूर की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं रही। उनकी फिल्मों को रूस, चीन, मध्य एशिया और दुनिया के कई देशों में पसंद किया गया। उनकी छवि आम आदमी की थी, एक ऐसे इंसान जो संघर्ष करता है, सपने देखता है और कभी हार नहीं मानता। अब बात करते हैं हम उनके प्रमुख फिल्मों की। सबसे पहले बात करेंगे हम बरसात। इस फिल्म ने उन्हें एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई और आगे उन्होंने फिल्म करी आवारा। यह फिल्म विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। आवारा हूँ गीत आज भी लोगों के जुबान पर मौजूद है। श्री 420 इस फिल्म में ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच संघर्ष को दिखाया गया। मेरा जूता है जापानी गीत के अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। संगम रंगीन फिल्मों के दौर के एक बहुत बड़ी सफलता मिली। मेरा नाम जोकर, हालांकि शुरुआत में फिल्म सफल नहीं हुई, लेकिन बाद में इसे क्लासिक फिल्म माना गया। और आखिर में हम बात करेंगे बॉबी। इस फिल्म ने युवा प्रेम कहानी को एक नया ही एक कहते हैं ना एक नया दृश्य, एक दौर शुरू किया गया।
0: और इसी के साथ राज कपूर को संगीत की गहरी समझ थी। उनकी फिल्मों के गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज और जीवन का संदेश भी देते थे। उनके संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन तथा गायक मुकेश के साथ कई यादगार गीत दिए। राज कपूर को उनके योगदान के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे 1971 में पद्म भूषण, कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिले और 1987 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी उनको मिला।
1: और बात करते हैं हम आगे, यह सम्मान उनकी पूरे फिल्म जीवन के योगदान के लिए दिया गया। राज कपूर उन पहले भारतीय कलाकारों में से थे जिन्हें विदेशों से असाधारण लोकप्रियता मिली। रूस और सोवियत संघ के देशों में उनकी फिल्मों के लाखों प्रशंसक थे। उनकी फिल्म आवारा ने उन्हें वर्ल्ड लेवल पे एक नई पहचान दिलाई।
0: और इसी के साथ राज कपूर केवल एक अभिनेता नहीं थे बल्कि एक विचार, एक भावना और भारतीय सिनेमा की पहचान थे। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से आम आदमी के सपनों, संघर्षों और भावनाओं को पर्दे पर उतारा। आज भी जब आवारा हूँ या मेरा जूता है जापानी जैसे गीत सुनाई देते हैं तो राज कपूर की यादें ताज़ा हो जाती है। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत प्रेरित करता है।
1: और आज के दिन उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको शत शत नमन करते हैं।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आज हम आपको रूबरू कराएंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने आत्मविश्वास, शानदार अभिनय और अलग पहचान के दम पर फिल्म जगत में अपनी खास जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। एक स्टार परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर सफलता हासिल की। आइए जानते हैं उनके जीवन, करियर, पुरस्कारों और कुछ रोचक बातों के बारे में।
0: जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा का जन्म आज ही के दिन 2 जून 1987 को मुंबई में हुआ। वे प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा तथा पूनम सिन्हा की पुत्री है। उनके दो बड़े भाई हैं लव सिन्हा और कुश सिन्हा। सोनाक्षी ने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और शुरुआत में फिल्मों में अभिनेत्री बनने का कोई विशेष विचार नहीं था।
1: सोनाक्षी ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत वर्ष 2010 में सुपरहिट फिल्म दबंग से की। इस फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार सलमान खान थे। फिल्म में उन्होंने रज्जो का किरदार निभाया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद करा। पहली ही फिल्म में वह रातों रात लोकप्रिय हो गई। पहली फिल्म की सफलता के बाद सोनाक्षी को लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले।
0: उनकी कुछ प्रमुख फिल्में भी शामिल है जैसे राउडी राठौड़, सन ऑफ सरदार, दबंग 2, मिशन मंगल, हॉलीडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, लुटेरा, डबल एक्सल।
1: और इन फिल्मों में उन्हें बॉलीवुड

0: बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया गया। सोनाक्षी सिन्हा को उनकी सहज और प्राकृतिक अभिनय शैली के लिए जाना जाता है। उन्होंने केवल ग्लैमरस भूमिकाएं ही नहीं निभाई बल्कि कई चुनौतीपूर्ण किरदार भी निभाए। विशेष रूप से लुटेरा में उनके अभिनय की काफ़ी चर्चा रही और कई समीक्षकों ने इसे उनके करियर की सबसे बेस्ट फिल्म भी घोषित करी।
1: सोनाक्षी सिन्हा को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म दबंग के लिए आईफा पुरस्कार, जी सिने पुरस्कार, स्टार डस्ट पुरस्कार, स्क्रीन पुरस्कार, इन सम्मानों ने उनके अभिनय कौशल को एक नई पहचान दिलाई।
0: और उन्होंने अपने फैशन सेंस और उनकी आत्मविश्वास के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने हमेशा यह संदेश दिया है कि आत्मविश्वास और प्रतिभा किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। युवा वर्ग विशेष रूप से उनके व्यक्तित्व से एक इंस्पिरेशन लेते हैं।
1: और इसी के साथ सोनाक्षी सिन्हा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल नाम या परिवार से नहीं मिलती बल्कि निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और अपने काम के प्रति समर्पण से प्राप्त होती है। उन्होंने हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है।

0: आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता की जिन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से न केवल मनोरंजन किया बल्कि समाज, राजनीति, प्रेम, रिश्तों और मानवीय भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्मकार मणि रत्नम की।
1: मणिरत्नम केवल एक निर्देशक नहीं बल्कि एक ऐसे रचनात्मक शक्ति है जिनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान दिलाई और सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। मणिरत्नम का जन्म 2 जून 1956 को मदुरै यानी तमिलनाडु में हुआ। उनका वास्तविक नाम गोपाल रत्नम था।
0: उनका परिवार फिल्म निर्माण और वितरण के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, इसलिए बचपन से ही उन्हें सिनेमा का माहौल मिला। हालांकि शुरुआत में उन्होंने फिल्म उद्योग में आने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने व्यवसाय प्रबंधन यानी MBA की पढ़ाई की और कुछ समय तक कॉरपोरेट क्षेत्र में भी कार्य किया, लेकिन अंततः उनका झुकाव फिल्मों की ओर बढ़ा और उन्होंने भारतीय सिनेमा में कदम रखा। मणिरत्नम ने निर्देशन की शुरुआत 1983 में कन्नड़ फिल्म पल्लवी अन्नु पल्लवी से की।
1: पहली ही फिल्म से उनकी प्रतिभा की झलक दिखाई देने लगी। इसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे एक अलग पहचान बना ली। 1986 में आई फिल्म मौना रगम ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। यह फिल्म विवाह और रिश्तों पर आधारित थी और दर्शकों द्वारा समीक्षकों दोनों को बहुत पसंद आई। इसके बाद उन्होंने लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते गए। फिल्म रोजा, हम बात कर रहे हैं रोजा फिल्म की, एक आतंकवाद और देशभक्ति पर आधारित थी। इसी फिल्म से संगीतकार AR रहमान ने फिल्मी दुनिया में भी कदम रखा। बॉम्बे, यह फिल्म सांप्रदायिक सद्भाव और प्रेम की कहानी थी। फिल्म ने पूरे देश में चर्चा बटोरी। आज भी इसे सामाजिक विषयों पर बनी सबसे प्रभावशाली फिल्मों में गिना जाता है। दिल से मुख्य भूमिका में थे शाहरुख खान और मनीषा कोइराला। इस फिल्म का जो मुख्य गीत था छैया छैया, वो विश्व भर में लोकप्रिय हुआ और गुरु, व्यापार जगत और सपनों की कहानी पर आधारित यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई।
0: और रामायण की आधुनिक व्याख्या के रूप में इस फिल्म को देखा गया। मणिरत्नम की फिल्मों की एक बड़ी विशेषता उनका संगीत है। उनकी फिल्मों में संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा होता है। उनकी और AR रहमान की जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाती है। दोनों ने मिलकर अनेक अमर गीत गाए।
1: जी बिल्कुल, मणिरत्नम को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। उनकी फिल्मों को निर्देशक, पटकथा और निर्माण के लिए सम्मानित किया गया और विभिन्न भाषाओं में उनके फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
0: मणिरत्नम ने भारतीय सिनेमा को नई सोच दी। उन्होंने दिखाया कि मनोरंजन के साथ साथ गंभीर सामाजिक विषयों को भी सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सकता है। उनकी फिल्मों ने आने वाली पीढ़ियों के फिल्मकारों को बहुत प्रेरित किया और आज अनेक निर्देशक उन्हें अपना आदर्श भी मानते हैं।
1: उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से करोड़ों लोगों के दिल को छुआ, समाज को सोचने पर मजबूर किया और भारतीय सिनेमा को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई। उनकी रचनात्मक दूरदृष्टि और कला के प्रति समर्पण उन्हें भारतीय सिनेमा में एक इतिहास सदैव अमर बनाए रखेगा। और चलिए सुनते हैं उन्हीं का ही एक फेमस गीत।

0: अब हम बात करते हैं भारतीय संगीत जगत के उस महान कलाकार की जिनकी धुनों ने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ, जिनके संगीत ने भावनाओं को आवाज़ दी और जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को एक नई दिशा भी दी। हम बात करेंगे ऐसे महान संगीतकार, गायक, गीतकार और संगीत निर्देशक इलैया राजा की। उन्हें प्यार से इसे ज्ञानी यानी संगीत का ज्ञानी कहा जाता है। उनका संगीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है।
1: इनका जन्म 2 जून यानी आज ही के दिन 1943 को पन्नईपुरम नामक गांव

0: में हुआ जो तमिलनाडु में स्थित है। उनका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। बचपन से ही उन्हें लोक संगीत और पारंपरिक दोनों से विशेष लगाव था। कम उम्र में ही वे अपने भाई के संगीत दल के साथ विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम देने लगे। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें भीतर संगीत की गहरी समझ विकसित की।
1: इलैयाराजा ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत का भी गहन अध्ययन किया था। वे लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से क्लासिकल गिटार में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने भारतीय लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी ऑर्केस्ट्रा का अद्भुत मेल किया।
0: साल 1976 में तमिल फिल्म अन्ना किली से उन्होंने संगीत निर्देशक के रूप में शुरुआत की। इस फिल्म का संगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे दक्षिण भारत में उनकी चर्चा होने लगी। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने भारतीय फिल्म संगीत का इतिहास बदल दिया।
1: और इसी के साथ 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में इलैयाराजा दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय संगीतकार बन गए। उन्होंने हजारों गीतों की रचना की और अनेक भाषाओं में संगीत दिया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में उनका संगीत लोगों के दिलों पर राज करने लगा।
0: 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक में इलैयाराजा दक्षिण भारत सिनेमा के सबसे लोकप्रिय संगीतकार बन गए। और प्रसिद्ध फिल्म की बात करें, मुंद्रम पिराई, इस फिल्म का संगीत आज भी याद किया जाता है। नाया कान, इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ संगीत कार्यों में गिना जाता है। सिंधु भैरावी, यह फिल्म उनके कैरियर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। और पजहासी राजा, इस फिल्म के लिए उन्हें बैकग्राउंड स्कोर को राष्ट्रीय सम्मान 1993 में उन्हें इतिहास रच दिया गया।
1: वे पहले भारतीय बने जिन्होंने लंदन की रॉयल के साथ पूर्ण सिंफी की रचना की। यह उपलब्धि भारतीय संगीत के लिए गर्व का विषय मानी जाती है। वर्ष 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।
0: रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ साथ वर्ष 2018 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्राप्त किया गया। और साल 2012 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और साल 2022 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया।
1: इलैयाराजा का जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिभा, अनुशासन और निरंतर मेहनत किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है। एक छोटे से गांव से लेकर विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त करना उनके संघर्ष और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और आज का अब हम बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में। 2 जून के दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हुई। और हम बात करेंगे सबसे पहले 1953 में आज ही के दिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्य अभिषेक हुआ।
1: 1946 में इटली राजशाही से गणतंत्र बना। और 1964 भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था।
0: और हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी, उनके ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए महारानी एलिजाबेथ ने आज ही के दिन उनको 1953 में सम्मानित किया। और फ्रांसीसी फोटोग्राफर लुई ने चांद की पहली फोटो आज ही के दिन प्रदर्शित की।
1: 2020 में भारत सरकार ने चंद्रयान 3 अभियान को मंजूरी दी और इसी के साथ भारत रत्न पुरस्कार 1954 में देना प्रारंभ किया गया।
0: और आज ही के दिन हम नेशनल साइंस फ्रिक्शन डे भी मनाते हैं।

0: अब हम बात करते हैं खेल जगत की। हॉकी भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए बड़ी खबर, शालिमा टेटे को आगामी FIH महिला नेशंस कप 2026 के लिए टीम की कप्तान बनाए रखा गया है। यह टूर्नामेंट 15 से 21 जून तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा।
1: फुटबॉल फीफा विश्व कप 2026 की तैयारियों के तहत विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा रहे हैं और फुटबॉल प्रेमियों की नज़र में इन मुकाबलों पर भी टिकी हुई है।
0: अब बात करते हैं महिला क्रिकेट। भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के खिलाफ T20 का मुकाबला खेलेगी। यह सीरीज आगामी महिला T20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: उम्मीद है कि ये पेशकश आप सभी को पसंद आई होगी। मैं थी आपकी होस्ट माहिन खान और आज मेरे साथ थी
0: कशिश,
1: और हर दिन आपके ढेर सारे प्यार के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ साथ हम अपने आखिरी गीत की तरफ चलते हैं और लेते हैं आपसे अलविदा।

0: कार्यक्रम युववाणी अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से

0: नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सूरज की सुनहरी किरणें अब विदा ले रही है और शाम की महफिल आपके लिए मधुर गीतों की सौगात लेकर तैयार है। तो सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत रॉय फिल्म से अंकित तिवारी की आवाजों में।

बारिश की बूंदें भी कमाल करती है दोस्तों, खिड़कियों पर दस्तक देकर दिल के तारों को छेड़ जाती है। ऐसे ही सुहाने मौसम में चलिए सुनवाते हैं आपको अगला गीत फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से। और इस गीत को गाया है जानी, विशाल मिश्रा और साथियों ने।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अरिजीत सिंह, शेखर और नंदनी की आवाज़ों को भी आप सुन रहे थे। फिल्म थी शंघाई। आइए सुनवाते हैं अगला गीत क्रिएचर 3 फिल्म से, और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह और साथियों ने।

इस प्यारे से गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं जयपुर अजमेर केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर सुनेगा जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें, यही सही मायनों में विकास है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं ने जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा और नए अवसर देकर उनका जीवन बदला है। श्रीमती मुर्मू ने देश में प्रतिभा की पहचान, पोषण और विकास के लिए सही मंच देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, खासतौर पर जनजातीय समुदायों के युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आग्रह किया।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के सुल्तानपुर सहित 3 स्थानों पर 39,18,00,000 रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें इंडोर स्टेडियम, पुलिया निर्माण और बूढ़ाधीत के विकास कार्य शामिल हैं। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की आखिरी तारीख बढ़ाकर 6 जून कर दी है। श्री बिरला ने कहा कि हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पर बैठा वह गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कॉम्पिटिशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50,00,000 की लागत से खेल स्टेडियम का काम पूर्ण होने की दिशा में, आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। सोशल मीडिया में श्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान राज्य के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार अवसरों और खेल संस्कृति को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक

में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं और प्रोत्साहन पर भी चर्चा की गई। साथ ही माय भारत के माध्यम से युवाओं को बढ़ावा देने संबंधी रूपरेखा पर भी विमर्श किया गया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इनकी सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्य भर के पेट्रोल पंप डीलरों से संवाद भी किया। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बुकिंग के 3 दिनों के अंदर की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मार्च और अप्रैल महीनों के बाद 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि लोगों को ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई गलतियों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति ले ली है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। CBI ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पेपर लीक के आरोपों के मद्देनजर पिछले महीने हुई नीट UG परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब ये परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की ओर से नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद शपथ ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ये नियुक्तियां की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यानी आभा आईडी बनाने में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य में 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाई जा चुकी है। इससे नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य सेवा मजबूत हो रही है। आभा किसी भी नागरिक के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का डिजिटल माध्यम है। इस डिजिटल स्वास्थ्य पहचान से चिकित्सा की पारदर्शी सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित होती है। 14 अंकों की इस यूनिक हेल्थ आईडी से पुरानी बीमारियों, लैब रिपोर्ट्स और दवाइयों का ब्यौरा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को मरीज की मेडिकल हिस्ट्री समझने में आसानी होती है। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय में मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जैतावत ने बताया कि इसमें 14 मानकों पर जांच की जाएगी। इससे किसानों को खाद के सही उपयोग में सहायता मिलेगी। इस पहल से मिट्टी के पोषक तत्वों और सिंचाई जल की गुणवत्ता भी परखी जाएगी, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसानों को वैज्ञानिक सलाह दी जाएगी। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही फसलों की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। उधर भीलवाड़ा में भी खेत बचाओ अभियान के तहत किसान संगोष्ठी रखी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर में एक पटवारी अंकुश कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसने खाते के विभाजन के एवज में 1,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और घूस की पहली किस्त के रूप में ये राशि ली थी। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्वच्छता गतिविधियों में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न शहरी निकाय एक दूसरे की श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां और नवाचार साझा करें। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों में तकनीकी एकरूपता लाने के लिए नियमित कार्यशालाएं करने पर भी बल दिया। राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 27 अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र चलाए जा रहे हैं। मौसम में आए बदलाव के बाद राज्य की

0: ज्यादातर भागों में दिन और रात का पारा सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे मापा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश से लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। हालांकि अंधड़ और तेज हवाओं से कई जगह व्यापक नुकसान भी हुआ है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि जिले में कल रात आए अंधड़ से कई गांवों और ढाणियों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और ढाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग ने आज भी जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जताई है। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। विभाग ने कहा है कि कल और परसों कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की बढ़ोतरी के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी रहने से अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत का अनुमान है। अधिकतर हिस्सों में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। प्रदेश में अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए मेगा नाकाबंदी अभियान चलाया गया। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि कल चलाए गए इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा नाकाबंदी प्वाइंट बनाए गए। इन पर 74,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की गई और 15,000 से अधिक चालान काटे गए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 कल नई दिल्ली में दिए जाएंगे। समारोह में देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कृत होने वाली पंचायतों के प्रमुख अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर प्रस्तुतिकरण भी देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार वीरता और विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध, सप्लाई पूरी तरह सामान्य, मुख्य सचिव ने समीक्षा की। राजस्थान ने 7,19,00,000 से ज्यादा आभा आईडी बनाकर देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख रामेश्वर बेड़ा ने तैयार किया है। सूर्य नगरी जोधपुर में बीते महीने भीषण गर्मी के बीच विभिन्न धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों के साथ सरकारी समारोहों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के जोधपुर दौरे और विकास से जुड़े समाचार भी खास रहे। जोधपुर शहर ने पिछले दिनों अपना 568वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1459 में राव जोधा द्वारा स्थापित इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना का समारोह बीएसएफ कैमल फ्रंटियर बैंड कार्यक्रम के साथ हुआ। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित समारोह का शुभारंभ विधायक अतुल भंसाली ने किया। इस दौरान मेहरानगढ़ में पर्यटकों का परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। तूर जी के झालरे पर दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया। मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा में भी कार्यक्रम हुए। जोधपुर के रातानाड़ा सर्कल पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण समारोह रखा गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शरीक हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति की जनसेवा, सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

0: पिछले दिनों जोधपुर की कई रेलवे सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जैसलमेर तक विस्तारित किया गया, वहीं जोधपुर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच बढ़ाए गए। जिला मुख्यालय पर 19वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेले में शिरकत करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जोधपुर स्थित भगत की कोठी इलेक्ट्रिक लोको शेड देश भर में अपनी पहचान बना रहा है। अप्रैल 2026 तक यहां से 181 इलेक्ट्रिक इंजन कमीशन किए गए। शेड से निकले इंजनों से उत्तर पश्चिम रेलवे की 80% यात्री ट्रेनें और 61% मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की ओर से मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत फीच गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग और सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति तथा जैविक और कंपोस्ट खाद के महत्व की जानकारी दी। काजरी की ओर से ग्राम सोइत्रा में कृषक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज परिहार ने किसानों को मृदा परीक्षण, स्वास्थ्य कार्ड और संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी दी। कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर बीआर चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर को साल 2025 का सर्वश्रेष्ठ AICRP तिल केंद्र पुरस्कार मिला है। देश भर के 28 केंद्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान, उन्नत तकनीक विकास और तिल की 9 उन्नत किस्मों के विकास के आधार पर मंडोर को ये सम्मान दिया गया। जोधपुर रेल मंडल की ओर से आयोजित स्वच्छता कार्यक्रमों की बदौलत 10वें स्वच्छता पखवाड़ा अभियान में उत्तर पश्चिम रेलवे ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। रेलवे बोर्ड के मूल्यांकन में उत्तर पूर्व रेलवे पहले और दक्षिण रेलवे तीसरे स्थान पर रहे। जोधपुर में मारवाड़ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपरा भोगी शैल परिक्रमा का आयोजन हुआ। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल दशमी पर ध्वज पूजन के साथ शुरू हुई परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जिले भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत इन दिनों विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 5 जून तक चलने वाले अभियान के तहत जल सेवा, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल की महत्ता बताई जा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में जिले के ओसिया में रिचार्ज शाफ्ट का लोकार्पण और वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन शांति और कौमी भाईचारे की दुआ मांगी गई। जोधपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत, उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद, पूर्ति सामान्य। मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7,19,00,000 बत्ती आभा आईडी बनार, देश में दूजा पायदान माथे पुग्यो। और प्रदेश में आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवाना ने देश री ताकत, उम्मीद और उजला भविष्य री निशानी बताया है। वे आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना रो फायदो लेवन वाला ने संबोधित कर रही है। राष्ट्रपति कहो कि समाज रा सगला तबका रो माली तौर और भणाई लिखाई रा हलका माए विकास असली बरकत है। श्रीमती मुर्मू कहो कि वजीफा री सरकारी योजनावा जनजातीय समुदाय रा नौजवाना ने आला दर्जा री भणाई लिखाई और मौका देर वानी जिंदगी माए बदलाव लाई है। वह देश माए प्रतिभा री पिछाण, पोषण और विकास सारू सही मंच मुहैया करावन री जरूरत माथे जोर दीनो। राष्ट्रपति नौजवानों वारी जड़ाओं जुड़िया रहवन बाबत कहो।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजाति

0: समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा सुल्तानपुर समेत तीन ठोड़ा करीब 39 करोड़ 18 लाख रुपया खर्चों कराई चा विकास रा काम जनता ने सौंपया और नुआ कामारी शुरुआत की नी। आम आए इंडोर स्टेडियम और पुलिया बनावन रा काम में शामिल है। ये मौके बिरला कहो कि सरकार किसाना ने हमारी उपज रा वाजिब दाम देरावन सारू खेतीबाड़ी आधारित उद्योगों ने बढ़ावो दे रही है। वह कहो कि सरकारी मोल माथा गेहूं री खरीदी री आखिरी तारीख ही 6 जून कर दी रिची है। श्री बिरला कहो कि हर रहवासी री मूलभूत जरूरतां पूरी करण सारू सरकार लगातार जतन कर रही है।
2: सुल्तानपुर के गांव के अंदर अंतिम छोर पे बैठा वह गरीब व्यक्ति भी देश और दुनिया के कंपटीशन में भाग लेकर देश का नेतृत्व करे, दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा ले रहा है। इसीलिए खेल के क्षेत्र के अंदर केवल एक स्टेडियम नहीं बन रहा, या बगल में चले जाए तो महात्मा गांधी स्कूल में 50 लाख की लागत से खेल स्टेडियम का काम उन्होंने की दिशा में। आने वाले समय के अंदर 1 करोड़ की लागत से और स्टेडियम बनेगा।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सागे मुलाकात की। सोशल मीडिया रे जरिए मुख्यमंत्री बतायो के मुलाकात रे दौरान राज्य में नौजवाना रा कौशल विकास, नौकरी धंधा रा मौका और खेलना रा बारा में चर्चा करी जी। श्री शर्मा केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सा गई चर्चा कर राज्य में नवीकरणीय ऊर्जाओं जुड़ी जानकारी दीनी। प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रिपूर्ति सामान्य है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज राज्य में ईंधन रिपूर्ति व्यवस्था रो जायजो लीनो। इस दौरान वे प्रदेश रा पेट्रोल पंप डीलर सागे बातचीत कीनी। तेल कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो कि रसोई गैस री टंकियां बुकिंग रा 3 दिन में पुगाई जा रही है। वे बतायो कि मार्च और अप्रैल महीना पाछे 5 किलोग्राम वाला सिलेंडर री बिक्री में करीब 250% बढ़ोतरी हुई। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग रा सचिव अम्बरीश कुमार कहो कि लोगों ने ईंधन रिपूर्ति रे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का न्यू लिरीजी परीक्षा री कॉपियां में मिली गलतियां रा सत्यापन और कॉपियां ओजू जंचावन री अर्जी देवन सारू पोर्टल आज शुरू फेंक्यो। पोर्टल 6 जून तक खुल्यो रहेला। CBSE रे मुजब ओसु बीतो जहाँ चोड़ी कॉपियां ने प्रति ले चुका विद्यार्थियों सारू मुहैया कराई चियो है। दिल्ली री एक अदालत नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में आरोपित 5 जना ने जेल में बंद राखण री मियाद ई महीना री 15 तारीख ताई बधा देनी है। CBI ई मामला में हाल ताई 13 जना ने गिरफ्तार कीना है। ध्यान जोग है कि पेपर लीक रा आरोपां पाछे लाडला महीना भी नीट UG परीक्षा रद्द कर दी रीजी ही जो 21 जून ने पाछी ली जावेला। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज सुप्रीम कोर्ट रा 5 नुआ जजा ने पद री शपथ दिराई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली सागे आला वकील वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम री सिफारिश पाछे केंद्र री मंजूरियों शपथ दिराई ची। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी बनावन रा मामला में राजस्थान देश में दूजी ठोड़ माथा आ गयो है। राज्य में हाल ताई 7 करोड़ 19 लाख मोमबत्ती आभा आईडी बनाती रिची है। आभा आईडी किनी रहवासी रा स्वास्थ्य रो रिकॉर्ड हिफाजत उन राखण रो डिजिटल जरियो है। 14 अंक वाली ई यूनिक हेल्थ आईडी जूनी बीमारियां जांच रिपोर्ट और दवाइयां रो ब्यूरो रखियो जावे है, जिणु जरूरत पड़िया डॉक्टर मरीज री स्वास्थ्य री लाडली जानकारी आसानी हासिल कर सके है। केंद्र सरकार खेत बचाओ अभियान रा तहत जोधपुर रा कृषि विश्वविद्यालय में मिट्टी और पानी की जांच।

0: आ रकम लेवन रो आरोप है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी रा कामकाज रो जायजो लीनो। अहलकारा सागे मीटिंग में वह साफ सफाई रा काम में जनतारी भागीदारी ने मजबूत बनावन रा हुकम दीना। मुख्य सचिव कहो कि न्यारा न्यारा शहरी निकाया ने एक दूजा रा काम करन रा बेहतरीन तरीका और नुआ काम री जानकारी देवनी चाहिए। रबे मौसम राज्य रा घणखर हल्का माए आंधी बारिश बीच पारो सामान्य 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतर क्यों है। अंधड़ और जोरदार बायरो बाजन रे कारण कई ठोणा नुकसान री शंका है। माणा जैसलमेर खबर नवीस बतायो के वठे काल रात आया अंधड़ रे कारण कई ठोणा बिजली री पूर्ति ठप वेगी।
1: ग्रामीण इलाकों में आंधी तूफान और बारिश से विद्युत तंत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले में 1500 से अधिक बिजली के पोल गिर गए, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक गांव और डाणियों की बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी है तथा क्षतिग्रस्त लाइनों को दुरुस्त करने का कार्य तीव्र गति से जारी है। खेतों में लगी सोलर प्लेटों को भी भारी नुकसान के समाचार है। वहीं जिले में वन संपदा के साथ सम स्थित रिजोर्ट में भी भारी नुकसान हुआ है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: मौसम विभाग आज ही जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर संभाग रा कुछ हल्का माए बादलहारी गाज सागे बिरखा भेवन और कठे कठे ओला पड़बारा आसार चताया है। महकमा रे मुजब काल और 4 जून नई बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग माए कठे कठे आंधी बारिश माए ओजू बढ़ोतरी री संभावना है। इन दौरान कठे कठे तेज अंधड़ सागे बिरखा भेवन री संभावना है। मौसम महकमा रे मुजब आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह माए पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार है। प्रदेश माए अपराधारी रोकथाम असामाजिक तत्वों माथे लगाम लगावन और यातायात नियमों री पालना तय करण सारू नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक वी के सिंह बतायो के काल चलाई चिया ई अभियान रा तहत 74,032 गाड़ियां री जांच कर और 15,002 चालान काटी चिया। देश री 42 बेहतरीन पंचायतों ने काल नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 नवासी चावेला। कार्यक्रम में 34 ग्राम पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार और 8 पंचायतों ने नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार देर नवाजी जावेला। नवाजी जावन वाली पंचायतों की ओर वारा कामकाज रा तरीका री जानकारी दी जावेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 सारू 31 जुलाई ताई ऑनलाइन तरीकों अर्जियां दी जा सके है। वो इनाम वीरता, विज्ञान, पर्यावरण, समाज सेवा और कला समेत न्यारा न्यारा हल्का माए बेहतरीन उपलब्धियां हासिल करने वाला बच्चा ने दियो चावे है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4-8 जून ताई अहमदाबाद में रखी जावेला। अमरीका रो योगा एथलीट दल ही इनमें शामिल भेला। अमरीकी योगा एसोसिएशन और USISF रा संस्थापक और अध्यक्ष बलविंदर सिंह 11 सदस्यों वाला अमरीकी दल री अगुवाई करेला। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड बीच मौजूदा सीरीज रो तीजो और आखिरी T20 मैच आज रात 11 बजे शुरू भेला। वो मैच इंग्लैंड रा टॉन्टन में भेला। भारत यस्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिक्स रा अर्धशतकां री बदौलत सीरीज रो पहलो मुकाबलो 38 रनों जीत्यो हो, जबकि दूजा मैच में इंग्लैंड ने 26 रनों जीत मिली ही। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौजवानों ने देश री ताकत, उम्मीद और उजड़ा भविष्य री निशानी बताया। राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जरूरी तादाद में मौजूद, पूर्ति सामान्य। मुख्य सचिव हालात रो जायजो लीनो। राजस्थान 7,19,32 आभा आईडी बनार देश में दूजा पायदान माथे पुग्यो। और प्रदेश में आंधी बारिश रे कारण आवता सप्ताह में पारो 43 डिग्री सेल्सियस नीचे रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो।

0: मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती बाड़ी से जुड़ा कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम नेता भाई सर, राम राम।
1: राम राम नानू भाई, राम राम।
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला अगला ही किसान भाई बहना ने अपनो
1: राम राम सा। देखो सा नानू भाई, कार्यक्रम में आया हाँ, किसान भाई रे वास्ते जानकारी लाया हाँ, मौसम री जानकारी भी दांगा, तो सरकार कई योजना चलावे वंडी बात भी बतावांगा, दैनिक जीवन रा काम काज री बात भी किसान भाई ने बतावांगा, तो मनोरंजन करना भी नहीं भूलांगा सा।
0: बिल्कुल सा, कार्यक्रम में आप आवाई हो कि जटे ज्ञान विज्ञान री बात करा, वंडे लारे लारे देखो किसान भाई रो मनोरंजन भी जरूरी है, क्योंकि खेती बाड़ी कूड़े काकड़ रो काम करता करता देखो थक जाऊँ, और अबार अनी टाइम पे देखो आप खेती बाड़ी में देखो कई काम करा हाँ, वनडे बात करा हाँ, लेकिन अनी टाइम पे देखो आप बात करा कि खेतरी जब मेड़ बंदी वे वाह, अगर किसान भाई सही समय पर करे तो वनडो जीवन में कई लाभ रे वह सा।
1: तो देखो सा, खेती किसानी में खेतरी मेड़बंदी एक बहुत खास और पारंपरिक प्रक्रिया है। आपां यूं कही सकां कि भाई खेत रे चारी तरफ मिट्टी री एक मजबूत दीवार या पछे सीमा बनानो इज मेड़बंदी नहीं कहलावे, बल्कि यो देखो जमीन रो बंटवारो करवारे वास्ते इज नहीं वेवे, एक फसल ने हाउ पैदावार देवर वास्ते और जमीन री सेहत रे वास्ते यो बहुत जरूरी है सा।
0: बिल्कुल सा, सही बात की कि जटे आप खेत री मेड़ बंदी करा तो देखो सब पहली बात करा अपने खेत में सबसे अगर अच्छी चीज कोई है तो वह मिट्टी, और मिट्टी रो कटाव रोकवारी में भी या खेतरी मेड़बंदी जो है लाभदायक रहे, क्योंकि यदि तेज बारिश हुए या तेज हवा चले तो खेतरी जो उपजाऊ ऊपरी मिट्टी वे वह बहने या पचे उड़ने चली जावे, और मेड़बंदी एक सुरक्षा कवच री तरह काम करे जो मिट्टी ने खेतु बार बेवों रोके और खेतरी उपजाऊ शक्ति जो है वह नियमित बनाई रखे।
1: सही कह रहा हो सा। और नानू भाई देखो, खेत रो पानी खेत में रहवे, गांव रो पानी गांव में रहवे, मेड़बंदी जो है अणि सिद्धांत पे काम करे है। मेड़बंदी करवाऊँ वर्खा रो पानी खेत उबाणने नहीं जा पावे और जमीन रे महीने ज रे वैसा अणियों कई है, जमीन में रिसने वो परो जाएगा तो जमीन री नमी लंबा टाइम तक वणी तकी रहेगा, जणियों फसल सूखा सहन करवारी जो ताकत है वह भी नहीं मिलेगा, जणी टाइम पे पानी नहीं है तो वणी टाइम पे जमीन में नमी जो है वह फसल ने बढ़तवार देगा, और अड़े बड़े राजी कुआ है ट्यूबवेल है अनारो भूजल स्तर भी जो है वो सुधरेगा सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा, और जटे खाद और पोषक तत्वारी अगर आप बात करा तो मंडी सुरक्षा भी यो करे, क्योंकि आप सब जाना कि किसान भाई जो है अपने खेत में गोबर ही खाद या कंपोस्ट या रासायनिक उर्वरक डाले तो वे पानी रे लारे धूल ने बह सके, तो मेड़बंदी जो है वह देखो पानी ने रोक ने रखे, जड़ों की जो महंगा पोषक तत्व है वे खेत में ही रहे और फसला जो है वे पूरी तरह पाकती रहे और वणा ने भरपूर पोषक तत्व प्राप्त हुए।
1: अंडे लारिस देखो नानू भाई, मेड़ पे किसान भाई जो है जो भी फसल उगाएगा करेगा तो वणी किसान भाई अपनी आमदनी ने बढ़ाई सके, मेड़ पे ऐसी फसला या पेड़ लगाई सके जणियों कम पानी री जरूरत वे, जिससे कि दलहन फसलाएं अरहर या मूंगे, चारा फसला में नेपियर घास मवेशारे वास्ते उगाई सके, फलदार और कीमती पेड़ जिससे सहजन करौंदा या पछे बांस अणव नहीं सिर्फ देखो मेड़ मजबूत हुए बल्कि देखो अतिरिक्त मुनाफा भी किसान भाई कमाई सके सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा, और जटे देखो मेड़बंदी री बात करा तो यो देखो दो किसान भाइया रे बच्चे जो खेत री सीमा है वनडे भी देखो निश्चित रूप तय करे, ताकि भविष्य में देखो जमीन ने लेने वेवा वाला जो आपसी विवाद है झगड़ा है वणा ने भी देखो रोकियो जा सके, तो ये अंडे बातें सीमा रो निर्धारण और कानूनी सुरक्षा में भी कठिन कठे लाभदायक व्यवस्था।
1: बढ़िया बात बताई सा नानू भाई, और देखो अगर मेड़ पे कंटीली जाड़िया जिसरे की करौंदा या बच्चे घनी घास लगाई दी जाए तो या जैव बाड़ रो काम भी करे, आप देखा भाई फसला ने आवारा पशु और ये जो है चौपट कर देवे, तो आवारा पशु आने खेत में घुसवाऊ भी मेड़बंदी रोके, तेज गरम या पचे ठंडी हवा चाले जिन्हें की अबानु देखो लू भी चाली इन पालो भी पड़े सर्दी में तो सीधो

0: भाव जो है वो फसला पे नहीं पड़ेगा, वो कम बेच जाएगा और फसलारी रक्षा भी बेच जाएगा सा।
1: बिल्कुल सही बात कह रहा हो। तो जट देखो बाबा मेड बंदी रे महत्व की बात कह रहा। तो देखो मेड बंदी ने शुरुआत में यदि आप लगावा तो उनमें देखो थोड़ो श्रम और खर्च जरूर आवे, लेकिन लंबा टाइम तक यो देखो खेत री सेहत सुधारवा में और किसान भाई बहना री लागत घटे ने मुनाफा बढ़ावा रो सबसे बेहतरीन और अच्छो तरीको मानो गयो है।
0: और देखो जटे यो तरीको बढ़िया है तो आपना तरीका ने भी आप बढ़िया करा कि भाई जानकारी दे रहा अंडे लारे, आपनो तरीको भी यही जाए कि भाई जानकारी लारे गीत संगीत भी हुनावा।
1: बिल्कुल सा। तो हुना यो प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो नानू भाई देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत आपा सुनायो, लारे लारे संदेश भी सुनाया, और जट देखो किसान भाई खेती बाड़ी रो काम करे तो खेती बाड़ी मौसम पे निर्भर करे।
3: बिल्कुल सा।
2: तो आपको तो मौसम री जानकारी दे देवा।
3: बिल्कुल सा।
2: तो देखो जयपुर प्राप्त सूचना रे अनुसार आगामी दिना में मौसम में तापमान जो है 34 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस रेवारी संभावना है, और न्यूनतम तापमान की बात करा तो 23 डिग्री 27 डिग्री रे बच्चे रेवारी संभावना है। अंडे लारे देखो अनादना में भारी गरज और चमक रे लारे तूफान भी आवारी संभावना है। रात रे टाइम पे आंधी तूफान री आशंका रेवे। बच्चे तका दना में देखो खास रूप मौसम साफ और धूप वालों रही सके सा।
3: बिल्कुल सा। और जटे देखो अब जून रानी पहला सप्ताह री अगर बात कर रहे हैं तो उनमें खरीफ फसलारी तैयारी और बागवानी फसलारी देख रेख रे बातें यो बेहद महत्वपूर्ण समय है। अरे टाइम आपा जान रहे हैं कि गर्मी देखो तेज भी और मानसून रे आगमन रे पूर्व तैयारियाँ रे अगर आपा बात करा तो आने सप्ताह में किसान भाई जो है देखो कई कई काम कर सके वनडी जानकारी कराओ सा।
2: बिल्कुल सा। खाद्यान्न और दूजी जो खास फसलां है मन में खेती बाड़ी रा कई काम करे देखो यो टेम आगामी खरीफ सीजन री तैयारियां ने अंतिम रूप देवारो और वामणी री योजना बनावारो है। खेत री तैयारी और मिट्टी उपचार रा काम मन में करना है। जना खेता ने खाली छोड़ दी दो हो वटे देखो मिट्टी पलटवा वाला हल गहरी जुताई कर देनी है, और तेज धूप रे कारण हानिकारक कीड़ा रा अंडा लार्वा और खरपतवार रा जो बीज है वे खत्म हो जाएगा।
3: और जटे देखो खेत में देसी खाद डालवारी अगर आप बात करा तो मिट्टी रे जल धारण क्षमता बढ़ावा रे बात है। प्रति हेक्टर 10 से 15 टन अच्छी लगी हड़ी हुई गोबरी जो खाद है या बचे कंपोस्ट खेत में बिखेरने जुताई

0: करनी है और खेत रो समतलीकरण करना है, क्योंकि वर्षा रे पानी रो समान संचयन करवा रहे और जल भराव बचवा रहे वाते खेत ने समतल कर लेनो जरूरी है।
1: लारिज देखो, उन्नत बीज और आदान री जो व्यवस्था है वा भी कर लेनी है। बीज चयन री बात करना तो देखो, मक्का में जिसरे की प्रताप मक्का 9/92/86, सोयाबीन, मूंग, उड़द और ग्वार जैसी जो खरीफ फसल है, अनारा प्रमाणित और उन्नत किस्म रा बीज री व्यवस्था अबाणु किसान भया ने कर लेनी चाहे सा।
0: और जटे देखो, बीजोपचार री अगर तैयारी री बात करना तो बुवाई पहला बीजा ने फफूंद नाशी जिस तरह कार्बेंडीज में या ट्राइकोडर्मा जो है, या पचे राइजोबियम PSB कल्चर उपचारित करने राखनो चाहे। और अणु अगर बीजोपचार करने आप बीज री वावनी करांगा तो जो अपने कीट है वनाऊ अपने सुरक्षा रहेगा।
1: वर्खा आवा वाली है और वर्खा रो टेम आवे वटा पहली देखो अपने खेत तलाई री सफाई कर लेनी है। और वर्खा जल संचयन मॉडल री सफाई कर लांगा तो वर्खा रो पानी वनी में रहेगा और रास्ता में जो भी कचरा ईरा है वना ने हटाई देनो है। वर्खा रो पानी आसानी और वना कनी अवरोध रे इकट्ठो वही सके सा।
0: और जटे देखो, बागवानी फसला री अगर आप बात कर रहे हैं तो उनमें फल सब्जी और मसाला रे जटे बात करा तो बागवानी फसलों में विशेष प्रबंधन रे आवश्यकता है, क्योंकि आपा सब जाना कि सब्जी में देखा तो अन टाइम भिंडी, मरचा, बैंगन और टमाटर री फसल में वाष्पीकरण तेज व्यवहार के कारण शाम रे टाइम या पचे सुबह देखो हल्की सिंचाई करनी चाहे। और यदि संभव है तो पानी में आपा टपक सिंचाई प्रणाली या पचे बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली जो है वनडो उपयोग कर सका।
1: बढ़िया बात बतैसा। और देखो, सब्जियां री जी क्यारियां है वना में नमी बनाए रखनो भी जरूरी है। और खरपतवार रोकवारे वास्ते देखो, प्लास्टिक मल्च या वजह सूखी घास, पुआल और मल्चिंग ने भी दुरुस्त रखनो ऐसा।
0: और जटे देखो, कीट प्रबंधन रे अगर आप बात करें तो अणी मौसम में सफेद मक्खी, थ्रिप्स और रस चूसक कीटारो प्रकोप देखो देखवा में आवे तो अंडे नियंत्रण रे वास्ते खेत में पीला और नीला जो चिपचिपा प्रपंच है वना ने आपा लगाई सका।
1: फलदार प्रभार प्रबंधन री बात करना तो देखो, आम, अमरूद, नींबू, अनार ई सब है। नया बाग लगावारी तैयारी भी किसान भाई ने कर लेनो चाहे अणी टाइम पे। अगर नया बगीचा लगानो है तो जून रो यो सप्ताह जो है वो बहुत ही बढ़िया टाइम है। 1 मीटर आकार रा खाड़ा खोद लेना है। अणी में देखो 15-20 दिन रे वास्ते अना ने खुलो छोड़ देनो है ताकि धूप मिट्टी में रोगजनक नष्ट हो जावे सा।
0: और देखो, मौसम में बदलाव अबार आंधी तूफान और बारिश की संभावना, लेकिन पाछे अगर गर्मी तेज पड़े तो लू बचाव रे वाते छोटा और नया रोपिया लगा जो फलदार पौधा है वना ने देखो बचाव रे वाते टाट या छप्पर शेड बनाई ने अपने छाया जरूर करनी है।
1: अनार और अमरूद में बाहर प्रबंधन री बात करना तो अगर देखो मृगबार मानसून सीजन री जा फसल है ई लेनो किसान भाई छईरा है तो मई रे अंत या बचे जून रे शुरुआत में पौधा ने तनाव यानी पानी रोकवारे वास्ते पानी देनो जो है तनाव रोकवारे वास्ते अपने बंद कर देना चाहे और हल्की पानत करांगा और खाद भी देनो शुरू कर देना चाहे सा।
0: और देखो, अब आंधी तूफान रे जटा पा बात कर रहे हैं प्री मानसून री तो अणमे देखो किसान भाई बहन अगर फसला देखो सुरक्षित स्थान पर नहीं रखिए तो देखो उन्होंने सुरक्षित स्थान पर रख दो। और कीटनाशक रो छिड़काव करने देखो वणान अगर आप सही तरह भंडारण करोगा तो वो अगला टाइम बात है सुरक्षित रहेगा सा।
1: तो या तो है खेतीबाड़ी री बात, खेतीबाड़ी लारे देखो पशुपालन रो काम भी किसान भाई कर रहा है तो मवेशियां ने आपने जो है तेज तावड़ो पड़ रो वे वणी टाइम पे आपने बाने नहीं निकालना है, ताजा स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। और देखो लारे ही आपने जो मवेशी है वनारो टीकाकरण भी आपने कराना है, खुरपका, मुंहपका और ऐसा रोग जो है बरखारा मौसम में वही जावे तो वी नी वे अंडा प्रबंध भी आपने पूरा करना है सा।
0: और लारे लारे ध्यान रखना है मनोरंजन रो को तो कार्यक्रम में प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत होना वा सा।
1: हाँ सा।

0: तो देखो नीता भाई सा ये तो हुए प्यारो सा राजस्थानी मनभावन राजस्थानी लोकगीत। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा किसान भाई बहना ने देखो आप खेती बाड़ी संबंधी जानकारी दी थी, लेकिन लारे लारे आप जानकारी दा कि सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वड़ा योजना रो वे कई प्रकार लाभ ले सके। तो आज आप लेने आए हैं किसान भाई बहना वाते योजना जो खेती बाड़ी में संबंधित और वनडो नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
1: और देखो, यह योजना जो है भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिनकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 ने की दी गई ही। और योजना का खास उद्देश्य भी है कि देश रा हर खेत तक पानी पहुंचे और देखो जल संसाधना रो सही उपयोग जो है वो वही सके सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आप अगर भारतीय कृषि की बात करा तो भारतीय कृषि पूर्णतया मानसून पर निर्भर है। और मानसून के बारे में आप जाना कि मानसून कभी टाइम पे आवे और कभी टाइम पे नहीं आवे। तो अणी मानसून री अणी स्थिति रे कारण किसान भाई ने नरोई हड़ो देखो नुकसान उठानो पड़े। तो अणी समस्या ने दूर करवा वाते जो सरकार है वणी अणी योजना ने तैयार की दो कि

0: किसान भाई सही समय पर अपनी फसला जो है वड़ाने अच्छी तरह उगाई ने आमद प्राप्त कर सके।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने प्रभावी बनावारे वास्ते देखो अंडा कई भागा में इन्हें बांटियो है। और अणा भागारी बात करना तो देखो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम भी चले रखियो है। अंडे तक देखो देशरी वना बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना जिसरे की बांध और नहरा है अणा ने तेजियों पूरा करना है जो कि सालों अधूरी पड़ी तकी है ताकि किसान भाई ने जो है तुरंत वनारो लाभ मिल सके सा।
0: बिल्कुल सर, और अनुपेला यदि आप बात की तो आप क्यों गांव रो पानी गांव में और खेत रो पानी खेत में, तो हर खेत जो है वन्ने देखो पानी मिले। अंडे बात देखो नया जल स्रोत जो है वनडो निर्माण कियो जा रो है। पारंपरिक जल प्रणालियां जिस तरह की तालाब है कुआ है अनारी मरम्मत और अनारो पुनरुद्धार कियो जावे ताकि जो वर्कारो जल है वो यदि वन में भरा है तो वनडो किसान भाई उपयोग कर सके। और वर्षा जल संचयन जो है अन्य बढ़ावा दियो जावे ताकि वर्का पानी में आपा क्यों कमेरी या स्थिति यदि आवे तो वन में कही कि वणी पानी ने रोकने किसान भाई जो अपना दैनिक कार्य है वे और सिंचाई में वनडो पूर्णतया उपयोग कर सके।
1: बढ़िया बात बताई सा। और देखो नानो भाई अगर फसला पानी जो है वह पानी पे निर्भर करे पानी री हर एक बूंद बचा मंगा जदीस जो है खेती बाड़ी लहलाएगा तो प्रति बूंद वती फसल लेवा रे वास्ते आधुनिक और वैज्ञानिक सिंचाई तकनीक अपने अपनानी पड़ेगा। किसान भाई ने उन्नत प्रणालियाँ रे वास्ते देखो भारी सब्सिडी भी सरकार दे रही है। अणि में देखो टपक सिंचाई है अण में पाइपारे जरिए पानी सीधा पौधारी जड़ा तक बूंद बूंद करने पहुँचाया जावे जणे पानी बर्बादी जो है लगभग बिल्कुल शून्य वे जावे सा। अने लारिस देखो फवारा सिंचाई भी एक तकनीक है अने में पानी ने फवारा रे रूप में खेता में छिड़काव करियो जावे जने उन ढलान वाली जो जमीन है वना पे आसानी जो है सिंचाई वे सके सा।
0: बिल्कुल सा, और जटे देखो जल ग्रहण क्षेत्र विकास रे अगर आप बात करा तो आपा जाना कि अंडे तह सूखा क्षेत्र में मिट्टी और नमी ने रोकवारा उपाय भी किया जावे जिस तरह की मेड़बंदी करनो छोटा छोटा चेक और डैम बनाना ताकि भूजल स्तर जो है वो ऊपर उठ सके और किसान भाई बहन लाभान्वित हो सके।
1: कोई भी देखो सरकार योजना चलावे वंडा बहुत सारा लाभ भी वे तो देखो अणी योजना रा कई लाभ है या बतावा कि भाई पानी री भारी बचत वे वे टपक और फव्वारा सिंचाई अपनावाऊँ जो पारंपरिक तरीका रे मुकाबले 40-50% तक पानी री बचत किसान भाई कर सके सा।
0: और देखो जेटर लागत में कमी रही अगर आपा बात करा तो पानी रे लारे लारे उर्वरक भी देखो आपा सीधा पौधा री जड़ा तक दे सका जणो की खाद और मजदूरी रो जो किसान भाई रो खर्च वे वो भी कम वे वैसा।
1: अंडे लारे इस देखो फसला ने जरूरत रे अनुसार सही टाइम पे पानी मिलवाऊ पैदावार में जो है 20-30% तक आपा वृद्धि देख सका सा।
0: और जटे देखो सब्सिडी रे आपात की थी तो आधुनिक सिंचाई उपकरण या कृषि उपकरण या अनाने खरीद वाले बातें भी सरकार छोटा और जो सीमांत किसान है वनाने वनारे अनुसार जो है सब्सिडी भी प्रदान करे।
1: कई भी सरकार योजना चलावे तो वंडो लाभ लेवारे वास्ते देखो जरूरी दस्तावेज री जरूरत भी पड़े तो अंडे वास्ते देखो आवेदक रे वास्ते आम तौर पे देखो आधार कार्ड जमीन रा कागजात खतोनी जमाबंदी बैंक पासबुक री कॉपी पासपोर्ट साइज रो फोटो अणी तरीका उन दस्तावेज वेणा चावे सा।
0: और जटे देखो आवेदन रे अगर आप बात करा तो अंडे वाते किसान भाई बहन जो है राज्य रा कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग री जो आधिकारिक वेबसाइट है वन पे या पचे अपना ब्लॉक या जिला रा कृषि प्रसार अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो है वनाउन जैन अगर संपर्क करे तो अणी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रे बारे में अधिक जानकारी ले सके और अपनी खेती बाड़ी में अन्य अपने सके।
1: और देखो जटे सरकार कई भी योजना चलावे जमीनी स्तर तक वंडो लाभ पहुंचे यो सरकार रो उद्देश्य भी है और आपनो भी उद्देश्य है कि भाई अना किसान भाई बहना ने जानकारी देवा ताकि भी पूरो लाभ उठाई सके। लाभ देखो आप भी उठावा कि भाई कार्यक्रम में जानकारी कराई रहा वंडेला रे गीत संगीत रो लाभ भी आपको तो उठाई लेवा।
0: बिल्कुल सा, और हुणा यो प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत।

0: बिल्कुल सही हो। तो हुणे प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत। और देखो जदि आपां कणी भी चीज़ ने अगर मचावांगा, यानी भजन में भी यही क्यों कि देखो माणी बचत करो और माणी तकदीर सुधारो। तो देखो आज जो चीज़ आपने अच्छी तरह मल रही है, अगर वन्ने आप भविष्य रे वाते संचय करांगा तो अपनो भविष्य बेहतर वेगा। और आज जो आप जानकारी लाया हाँ वह भी जल री बचत संबंधित लाया हाँ।
1: बिल्कुल सा केवे भी है कि जल है तो कल
0: कल
1: है,
0: है
1: वरना कई नहीं है। आप सुबह उठा वध्यूँ लेने जो है पानी रो इस्तेमाल करा, और घर में जल री बचत करनो नहीं केवल देखो अपने पानी रे बिल ने कम करे, बल्कि देखो पर्यावरण और आवा वाली जो पीढ़ियां है वनडे वास्ते भी बहुत जरूरी है। पानी री एक एक बूंद जो है बहुत कीमती है सा।
0: बिल्कुल सही कि आपके पानी री एक एक बूंद कीमती। और कुछ आसान और प्रभावी उपाय जो आपा देखो अपने घर में अपनावा, तो रोजाना जो पानी रो खर्च है या पानी जो आपा कहें कि बहीने चलो जावे वनडे भारी मात्रा री आपा बचत कर सका, तो कुछ जो प्रभावी उपाय है वना में देखो आपा बात करा तो सबसे पहले देखो आवे रसोई। तो रसोई में जल बचत आपा कणी प्रकार कर सका बताओ सा।
1: देखो सा बर्तन धोवा वनी टाइम पे नल ने लगातार खुलो नहीं रखना है, अन्य बजाय देखो एक टब या बाल्टी में पानी भरने बर्तन साफ करांगा तो उनमें लगभग देखो 50% पानी तकरी बचत भी जाएगा सा।
0: बिल्कुल सही क्योंकि आधो पानी बचत भई जाए। और जटे देखो आपा सब्जी और फल ने लावा हाँ और रसोई में देखो वनारो उपयोग करा, तो सब्जी और फल ने धोता समय देखो सब्जियां जो है वह बेहतर लगा पानी में अगर आपा धोवा तो वनो देखो पानी ज़्यादा बर्बाद हुए। अंडे बजाय कहीं ठामड़ा में अगर आपा पानी भरने वना ने धोवांगा और बाद में वही बचो लगो जो जल है आपने रसोई रो जो गार्डन है या पचे किचन रसोई जो है वन में अगर डाला या पचे पेड़ पौधा में डालता तो देखो वनडो अपनो लाभ मल सके।
1: अंडे लारी साहब देखियो वे कहे आजकल घरा में आरो फिल्टर लागियो तो को, और वन में भी देखो पानी नरो आरो व्यर्थ बे
0: बिल्कुल
1: जावे,
0: सा
1: तो घरा में लागवा वालो जो ये फिल्टर है अणी जो पानी निकले वंडी एक बाल्टी में इकट्ठो कर लेनो चावे, अंडो उपयोग देखो पोचा लगावा में बर्तन धोवा में या पछे आपने टॉयलेट फ्लश में उपयोग कर सका, तो एक पानी रा दो तीन उपयोग आपा ले सका सा।
0: बिल्कुल सा। और जटे देखो आपा हपड़वारी अगर बात करा तो बाथरूम में आपने जल बचत रहे टाइम पे देखो नाता समय शावर और प्रयोग आपने नहीं करनो, क्योंकि बाल्टी और मग्गा रो अगर आपा प्रयोग करा तो वणु देखो पानी में कमी रहे और शावर और नावों पे बहुत अधिक मात्रा में जो है पानी आपने बर्बाद वे है।
1: नरी हरिदान नानू भाई आप देखियो वह का कि लोगारी आदत वह कि भाई ब्रश कर रहा है या पचे सेविंग कर रहा है तो नल ने जो है भी खुलो छोड़ देवे और ब्रश करता रहे, तो असो आपने नहीं करना है। ऐसा करवा रहे बजाय देखो जरूरत पड़वा पे नल खोलना है या पचे मग्गा में पानी लेने आपा यो काम कर सका सा,
0: बिल्कुल
1: अणी
0: सही
1: भी देखो
0: कह
1: पानी री बहुत बचत वैसा।
0: कि दैनिक उपयोग में जैसे आप बात करें कि अगर आप टॉयलेट रो यूज करा तो आजकल देखो जो फ्लश रो उपयोग वे वन में भी देखो आपने चाहे कि ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं करना है, टॉयलेट में कम और ज़्यादा पानी फेंकवा वाला आजकल बटन रहा उपयोग हुए। और अगर पुराना फ्लश हुए तो आपने चाहे कि वन में अगर आप एक प्लास्टिक री भरी लगी पानी री बोतल भी रख देंगा तो वनों भी यदि भी आप फ्लश करेंगे तो वन में भी थोड़ा पानी कम खर्च होगा तो वो भी कठे न कठे जल री बर्बादी ने रोक सके।
1: या तो बहुत बढ़िया बात बताई सा, और देखो साफ सफाई और कपड़ा धोती टाइम पे भी आपा जो है जल्दी बचत कर सका, वॉशिंग मशीन रो पूरा उपयोग ले रहा आपा तो अन्य महीने देखो जदी भी वॉशिंग मशीन चलावा तो आपने बड़े दोबारे वास्ते जी भी कपड़ा है बना रो पूरा लोड वेनो चावे रोज़ थोड़ा

0: थोड़ा कपड़ा धोवारी बचाए अपने, देखो कपड़ा भेरा कर लेना है, पछे धोवांगा तो देखो पानी और बिजली दोयारी बचत कर सका सा।
1: बिल्कुल सा। और आजकल आपा देखा कि नरी हरी जगह जो है गाड़ी धोता टाइम या पचे कार या बाइक देखो आजकल रोज साफ करे, तो वरने देखो कपड़ा रे साफ करवारी बजाय देखो आजकल पानी उ धोता लगा लोग अपने नजर आवे, तो अपने चाहे कि वना ने सीधा पानी री नलियों ने धोई ने बाल्टी और कपड़ों अगर साफ करांगा तो सैकड़ों लीटर जो पानी है वो आपा बचाई सका। हाँ
0: अंडे लारिस देखो घर में अगर पक्को फर्श है तो वन में देखो आपा पोछा लगावा, सीधो पानी नहीं धोनो चाहे पोछा लगावांगा तो भी पानी बहुत हद तक बच सके, और वो पोछा रो पानी है वो भी आपा क्यारे हमें और नाक सका सा। और घर रे बांधने और दूजा उपाय भी आपा कर सका, पौधा ने पानी देनो है पौधा ने दोपहर रे बजाय सुबह या हांजरी टाइम पे पानी दांगा तो पानी जल्दी भाप बनने नहीं उड़ेगा और पौधा ने जो है पूरा पोषण भी मिलेगा। अंडे लारे देखो आपा पहली भी बताई भाई ड्रिप सिंचाई विधि रो उपयोग भी आपा कर सका सा।
1: और घर में देखो अपने कहीं भी नल पाइप या पचे फ्लश टैंक में अगर कोई पानी लीकेज वही रहो वह या टपक रहे वह, तो उन्हें तुरंत ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि एक छोटो सो लीकेज भी देखो आपा जाना कि दिन भर में नरो हारो पानी जो है वो बर्बाद कर सके हैं।
0: अंडे लारेज वर्षा जल संचयन रा उपाय भी अपने अपना ही लेना चाहे, क्योंकि अब अनु देखो वर्षा आएगा तो अटा पहली अपने संचयन रा प्रबंध कर लेना है, बारिश रे पानी ने छत रे पाइप रे जरिए नीचे एक टैंक में इकट्ठो कर देनो है, अणी पानी रो उपयोग कपड़ा धोवा में कर सका, साफ सफाई में भी करियो जाई सके सा।
1: और एक छोटा सा विचार है अगर आपा बात करा तो जो आपा बात की दे अगर अन्य सब किसान भाई बहन और जो कार्यक्रम ढूंढ रहा है वे अगर अपनाएगा तो जल संरक्षण कोई बड़ो अभियान नहीं है बल्कि अपने छोटी छोटी आदतों रो बदलाव है। और आज ये जो छोटी छोटी बचत है अणु अगर आपा शुरुआत करांगा तो अपना भविष्य उज्ज्वल बनेगा सा।
0: सही कह रहा हो सा, और देखो भविष्य उज्जवल बनेगा जदीस जो देखो अपने जीवन में खुशहाली आएगा। खुशहाली आपको तो कार्यक्रम में भी करना चाला गीत संगीत आड़ी।
1: हाँ सर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो नीता भाई साहब, यो होने प्यारो सो संदेश और लार ला रहे होने राजस्थानी लोकगीत। और देखो भाई, खरीफ रे वावणी लोग किसान भाई करेगा तो वणा ने आपा कहना चाहूँगा कि वणारी खेती बाड़ी जो है, वण में भी देखो उर्वरक रो उपयोग करे, वो संतुलित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अपनी फसल जो है भी खराब वही सके सा।
3: देखो साहब, फसल ने ज्यादा नहीं बल्कि सही और संतुलित पोषण की जरूरत वे और देखो उर्वरक

0: असंतुलित और अनुमान रे आधार पे उपयोग उत्पादन गुणवत्ता और मिट्टी अणा तीना ने जो है वो नुकसान पहुंचाई सके सा।
1: बिल्कुल सही कह रहा हो जेटे। देखो असंतुलित उर्वरक रो अगर आप उपयोग करा तो वणु कही वे कि जो अपने फसला ला वंडी पत्तियां देखो हरी ले लेकिन जड़ा जो है भी कमजोर हो जाए, फूर और दारणा मंडवाते टाइम जो है वणारी क्षमता घट जावे है।
0: अंडे लारेज देखो फसल कीट और रोगारे प्रति संवेदनशील वेवे उत्पादन गुणवत्ता और मिट्टी री सेहत पे भी देखो बुरो असर पड़े, लागत बढ़ जावे और लाभ जो है वो घट जावे सा।
1: तो देखो आपने यदि भी उर्वरक रो उपयोग करा तो वनडे पहला देखो आपने मिट्टी रो परीक्षण जरूरी कराना है, क्योंकि हर खेत री मिट्टी अलग अलग वे और वन्ना जांच रे उर्वरक डालनो पया भी खर्च करना है और किसान भाई ने वनडो पूरो लाभ भी नहीं मिल सके।
0: मिट्टी परीक्षण देखो पतो चाले कि भाई कणी पोषक तत्व री कमी है, कतरी मात्रा देनी है, उर्वरक रो उपयोग क्षमता आणे बढ़े, लागत घटे और लाभ भी वैसा।
1: तो देखो जेटा आप देखो यूरिया री अगर आप बात करा तो यूरिया जो है देखो अगर अंडो असंतुलित उपयोग करांगा तो जो आप बात की थी कि देखो पत्तियां तो हरी रहेगा लेकिन जड़ कमजोर हो जाएगा, और यदि दाना भराव री टाइम आएगा वन टाइम दाना भराव कमजोर रहेगा, रोग और कीट रो प्रकोप अधिक वेगा और उत्पादन और गुणवत्ता जो है वह कम वही सके है।
0: और देखो यूरिया रो अगर संतुलित उपयोग करांगा तो जड़ मजबूत वेगा, पौधा स्वस्थ वेगा, फूल और दाना भराव हव वेगा, रोग कीड़ा रो असर भी कम वेगा, वत्तो उत्पादन वेगा और बेहतर गुणवत्ता मिलेगा। तो देखो संतुलित उपयोग जो उर्वरक है यूरिया डीएपी पोटास अनारो अगर आप उपयोग करा तो अनारो संतुलन अगर रखांगा तो ये सब चीजा जो है वो लाभ वेगा सा आपने।
1: और देखो जेटा आप बात करा कि सही समय और सही विधि रो भी देखो अपने ध्यान रखना चाहे, नाइट्रोजन रे यदि आप बात करा तो वो देखो 1/3 भाग जो है वो वावणी रे टेम, 1/3 भाग जो है बढ़वारी टेम, यदि फसला 30-35 दिन रे वही जाए और 1/3 जो है वो बालिया निकलवारी टेम अगर आप नाकांगा तो वो आपने सही फसल देगा सा।
0: फास्फोरस रो सही उपयोग री बात करा नानू भाई तो देखो फास्फोरस उर्वरक ने जड़ा रे भड़े देनो चावे, पूरा खेत में फैलानो या पछे कड़ी फसल महीने देवाऊ जो है नुकसान वे सके सा।
1: और जेटे देखो सूक्ष्म पोषक तत्वारी अगर आप बात करा तो ये कम मात्रा में ही सही लेकिन फसल रे विकास रे बातें अत्यंत आवश्यक है, जिस तरह जिंक रे अगर आप बात करा तो अंडी कमियों पत्तिया पीली पड़ जाए और वंडी वृद्धि रुक जाए।
0: बोरोन री बात करा तो देखो अंडी कमियों फूल जड़वा लागे और फूल भी कम आवे सा, आयरन री बात करा तो कमियों जो है पत्तियां पीली वे जावे सा।
1: और जटे देखो सल्फर री बात करा तो अंडी कम हो प्रोटीन कम वे और उत्पादन घटे, तो टेम टेम पर देखो अपने अना फसला री जांच करते रहना और सही तरह के जो उर्वरक है वणा ने अपने डालना, जिनमें आप एकीकृत पोषण प्रबंधन रे अगर आप बात करा जिनमें रासायनिक और जैविक दो ही प्रकार अगर आप मिलाई देंगे तो मिट्टी री सेहत भी सुधारेगा और स्थायी उत्पादन भी देगा सा।
0: सही की रहो सा, जिससे कि गोबर री खाद और कंपोस्ट अनारो प्रयोग कर सका, अंडे लारे हरी खाद है, फसल अवशेष है, रासायनिक उर्वरक ने संतुलित मात्रा में आप दे सका, मिट्टी में देखो कार्बनिक पदार्थ ने उबड़े, मिट्टी री संरचना और पानी धारण जो क्षमता है और सूक्ष्म जीव री सक्रियता है वा भी बढ़े सा।
1: तो किसान भाई बहन अगर अना सब बातों अगर ध्यान रखेगा तो देखो अगर खेतीबाड़ी में संतुलित उपयोग करेगा तो वणा लाभ रहेगा, लेकिन और कई बातें हैं जो किसान भाई ने याद रखनी चाहे।
0: देखो साहब मिट्टी परीक्षण रे आधार पे जो उर्वरक री मात्रा तय करनी चाहे, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास रो संतुलित उपयोग करना चाहे, नाइट्रोजन ने विभाजित जो खुराक है वणी में देनो चाहे सा,
1: और फास्फोरस ने देखो आप बात की थी कि जड़ा रे पां देनो है, सूक्ष्म पोषक तत्व री समय पे आपूर्ति करनी, जैविक स्त्रोत ने खेत में मिलानो है और सही समय सही विधि और सही मात्रा में अगर किसान भाई यो सब काम करेगा तो वणा ने अधिकाधिक लाभ मिलेगा सा।
0: और लाभ देखो अपने कार्यक्रम में भी किसान भाई रो करावा भाई जानकारी करेना, जानकारी लारे गीत संगीत रो लाभ भी उठवा देवा।
1: तो चलता चलता हुना यो प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत
0: हुनो सा।

0: तो देखो नीता भाई सही हो तो उन्हें प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और देखो कार्यक्रम में घड़ी रे आड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवारो अपनो टेम वेरो तो चाला सा जय जवान
1: जय किसान।

हाँ, रावड़ी राठौड़ का ये खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना, और चिंता ता चिता चिता ये वाला जो गीत है ये फिल्माया गया है सोनाक्षी सिन्हा पर, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है और आज का दिन इनके लिए बहुत ही खास है। आज बॉलीवुड की खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री सोनाक्षी का बर्थडे जो है। शॉटगन के नाम से मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी ने अपने दमदार अभिनय और शानदार अंदाज से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई।

रितु पाठक और नक्श अजीज़ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे आर राजकुमार फिल्म का गीत। और हम आपको बता दें कि इसी फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा ने चंदा के किरदार में अपनी सादगी, खूबसूरती और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया था। शाहिद कपूर और सोनाक्षी की जोड़ी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था। तो आइए सुनवाते हैं इसी फिल्म का अगला गीत।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत साड़ी के फॉल सा मैच किया रे, और ये गीत बहुत ही फेमस हुआ था। और हम आपको बता दें कि साल 2010 में फिल्म दबंग आई थी, और दबंग फिल्म से सोनाक्षी सिन्हा की फिल्मी करियर की शुरुआत हुई थी। और फिल्म इसी फिल्म से दर्शकों के दिलों में सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी खास जगह बना ली थी। उनके किरदार रज्जो को आज भी खूब पसंद किया जाता है।

दोस्त सोनाक्षी सिन्हा की मुस्कान और उनकी सादगी उन्हें बाकी सभी अभिनेत्रियों से बहुत ही अलग बनाती है। एक समय फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने वाली सोनाक्षी ने कभी नहीं सोचा था कि वे बॉलीवुड में सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाएगी।

मोनाली ठाकुर की खूबसूरत आवाज़ों को भी आपने सुना फिल्म लुटेरा से। और बात कर रहे हैं फिल्म लुटेरा की, तो आपको बता दें कि इस फिल्म में सोनाक्षी के अभिनय को समीक्षकों ने खूब सराहा। इस फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय का एक अलग ही रंग दिखाया।

रोमांस हो, कॉमेडी हो या फिर हो एक्शन फिल्म, सोनाक्षी ने हर तरह के किरदार में खुद को साबित किया है। रावड़ी राठौड़, हॉलीडे और आर राजकुमार जैसी फिल्मों में उनका काम दर्शकों को खूब पसंद आया है।

0: मुस्कान आपकी यूं ही बनी रहे, कामयाबी के नए मुकाम मिलते रहे, जन्मदिन के इस खास मौके पर ढेर सारी खुशियां आपके कदम चूमती रहे। इसी के साथ फिल्म संगीत हम यहीं समाप्त करते हैं और जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और उसके बाद होगा न्यूज एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी

0: प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का

0: डिजिटल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा

0: आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास एक रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जगजीत सिंह की गाई ये गजल अभी आप सुन रहे थे, कार्यक्रम था सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं नई फिल्मों के बेहतरीन तराने, और सबसे पहली पेशकश हम पेश करने जा रहे हैं दो पत्ती फिल्म से, परंपरा टंडन की आवाज़ में।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत कॉकटेल फिल्म से, और इस प्यारे से गीत को अपनी मधुर सी आवाजें दी है अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान ने।

विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक की आवाज़ों को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी सैयारा। आइए सुनवाते हैं अगला गीत धुरंधर 2 फिल्म से, नुसरत फ़तेह अली खान और शाश्वत सचदेव की आवाज़ें हैं।

धुरंधर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ों में। इसी के साथ नई फिल्मों का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं मन चाहे गीत, और इस सफ़र में हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरगम का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं।

सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाजों को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी ताल। आइए सुनवाते हैं अगला गीत अशोका फिल्म से। अलका याग्निक की आवाजें हैं और इनके साथ है हेमा सरदेसाई।

लुक्का छुपी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अखिल सचदेवक, अखिल और ध्वनि भानुशाली की आवाजें थी। आइए सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, उड़ता पंजाब फिल्म से दिलजीत दोसांझ की आवाजें हैं।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में समाचार। तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: We categorically reject.
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: Desist from making any comment on them.
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स कल से चार दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए

0: मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी औषधीय ऊर्जा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमे चैनल है, मीडियम वेव चैनल।
2: The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal, days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
3: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of boundary matters. It should be clear to all concerned that there is no role for any third parties in a bilateral matter between India and Nepal.
2: Mr. Jaiswal said India also rejects the unwarranted references made in Pakistan-European Union joint statement regarding Jammu and Kashmir.

Everybody bop-bop! Oh, yeah!